तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों, कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

और ये लड़की बहुत याद आता है, और न सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जब लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज जोक से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात यह है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रिय से इवंत की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों की कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता, तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं निघति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन दिन होंदत नेहन नेहन तक कहा दोस्तों। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का अमहता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने दिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है, और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आओ मिलकर सुना जाए, देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को

क्या खूब फरमाए कि अगर तुम साथ हो तो धीरे धीरे गम जो है वो भी फिसल जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ इसका है, हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। हालात जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन 100 घड़ा पानी किसी पेड़ में डाल दे, तब भी वो पेड़ में फल समय आने पर ही लेगा। आप जुड़े हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, मेरे आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले।

स्वीट स्वीट स्वीट रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए यहाँ से चला दिया जाता है। रिश्ते के पहचान, मेरे प्यारे सुनने वालों, रिश्ते के पहचान सुनिएगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। गौर से सुनिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, यानी कि एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देते हैं। एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता टूट जाता है तो फिर आप सब बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट गया वो रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ? आप ही तो बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट जाए वो रिश्ता कहाँ अच्छा हुआ? इसका मतलब है कि वो रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती के लिए, जो नहीं होना चाहिए। रिश्ता सच्चा और अच्छा हो तो जो हजार गलतियां के बाद भी टिका रहे, बना रहे। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बने रहे। ये मेरे सुनने वालों कि रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बना रहे।

सुंदर साहब गीत जो यहाँ से हमने श्रवण की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। हम अक्सर सुनते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का समय चल रहा है, तो प्रश्न उठता है ये कलयुग लाया कौन, ये कलयुग लाया कौन मेरे दोस्तों। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, पर लाया कौन ये सवाल उठता है। स्त्री ज्यादातौर पे स्त्री अपना शर्म भूल गए, पुरुष अपना संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म, नेता अपना कर्म, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। तो आप बताओ कलयुग लाया कौन। ये सच में एक सोचनीय वाला बात है कि कलयुग लाया कौन।

ओ मोरे रामा, अजब तेरी दुनिया। रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए। जीवन के कुछ नियमों जो जीवन में उतार सके, जीवन के कुछ नियम जो हम अपने जीवन में उतार सके तो जरूर से उतारे, और वो हम यहाँ से एकाध जो है उसको बता देती हूँ। मेहनत से पीछा हटाना नहीं, जरूर हमेशा मेहनत करना, जरूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पीछा हटाना नहीं मेरे दोस्तों। बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। अगर दुख आए तो घबराना नहीं। मुस्कुराने की आदत कभी छोड़ना नहीं। सदा मुस्कुराते रहे। आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना नहीं मेरे दोस्तों। आंख बंद कर दूसरों पर विश्वास मत करना। सत्य पर रूठे जाए उसे मनाना नहीं, और जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। सरल से बात यह है।

रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने एक बार फिर श्रवण की है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूर दूर से आप श्रवण कर रहे फावन हिंदुस्तानी रेडियो को, और आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। कल की चिंता छोड़िए यारो, जी हाँ, कल की चिंता छोड़िए, आज में ही जी लो, क्योंकि जिंदगी का जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। छल कपट और पाप उतना ही करना मेरे दोस्तों, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भोगने की शक्ति हो, क्योंकि मेरे दोस्तों कर्म किसी का भी नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते।

तेरा मस्त मगन लहराए सुंदर सा रोमांटिक गीत आपके लिए पेश किया जाता है, द एनख एख्त फाउन जिस पर आप चुने। दूर दूर से आप सुन रहे सुनने वालों, व्हाट्सएप पे बरख आता है और हम यहाँ से आपको भी दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, मेरे दोस्त जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरा जाना है। ये लाइन भी बहुत अच्छा है, ज़रूर से सुने कि रोने से तो आंसू भी पराया हो जाता है, रोने से भी आंसू पराया हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से, जी मेरे दोस्तों, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इंसानियत दिल में होते हैं, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है वैसे।

अरिजीत सिंह से हाँ यहाँ से हाँ सुने हम कि दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। हाँ दिल भी है जो मानता नहीं पर मोहब्बत करने चल जाता है। अभिमान अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आप कुछ किया है। यही फर्क है अभिमान और सम्मान में। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। यही अंतर होता है अभिमान में और सम्मान में। ये दो लाइन भी बहुत सुंदर है, सृष्टि और दृष्टि। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं।

जिंदगी का सफ़र भी अजीब है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आता है, हर चीज़ के लिए लड़ता है और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाता है।

कबीरा फुल सॉन्ग फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। उस फिल्म में रणधीर कपूर जो सुपुत्र है नीतू सिंह, ऋषि कपूर का सुपुत्र है रणधीर कपूर, दीपिका पादुकोण इसमें जो अपना कलाकार दिखाए है। दर्द दर्द मेरे दोस्तों, दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लिया करते हैं। बड़ा कठिन बात है ना कि दर्द वही देता है जिन्हें हम अपना हक देते हैं, अपना समझते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लेता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगता। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो आप भी बड़े हैं, आप भी समझदार हैं, तो आप जरूर से अपना समझ से समझें।

भाई बहन की आवाज ही मिले हो तुम बड़े नसीबों से। नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, ये भाई बहन जो सुना दी हमको।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: टीवी बंद करने, कुछ बातें करते हैं।
0: बैठो ना, कितना अच्छा गाना है। मैं भी ये गाना याद कर लेता हूँ। अगर तुम कहीं गई ना तो मैं भी।

बेवफा जा, हमने तेरा वादा देखा, आपको सुना दी है ये सुंदर सुंदर सा गीत महेंद्र कपूर। और उससे पहले था हम जब सिमट के आपके करीब आ गए फिल्म वक्त से। पहला गीत जो आपने सुने वो फिल्म वक्त से, और दूसरा था जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। के लिए मैंने ये सुंदर सा गीत चुन कर रखी हूँ, ज़रूर से आप सुनें।

0: शमा, ये खुशी काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए आपकी काफा और हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से लाया गया है। और हम आपको बता दें, फिल्म का नाम है घर घर की बात। नेकंती नेक नफाइफ तक के ये सुंदर सा फिल्म पिक्चराइज किया गया है और मुकेश और लता जी ने हमको यहाँ से जी हाँ सुना दी है, हमने सुन ली है ना
1: दिल के करीब।
2: छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए ना। जानते हैं आप, आपकी हरकत पे मैं आपको कानून के हवाले कर सकती हूँ।
1: भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब कानून हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के हवाले कर दे।
0: बहुत प्यार के साथ आपके लिए पेश किया जाता है, दिल थाम के सुने।

सा से दिल छेड़ दे, ये सुंदर सा गीत हमको सुना दी है, हम फिर से एक बार देख ले। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी, फिल्म का नाम पासपोर्ट देखती इन सस्तक में, ये सुंदर सा फिल्म भी पिक्चराइज किया गया है।

हमने सुने श्री महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और ये दूसरा भाग आशा भोसले जी की आवाज़ में। ऐसा है कि दो व्यक्ति ये गीत गाए हैं, और इसका मतलब है पहला जो था प्रश्न था, और ये दूसरा जो आशा भोसले जी ने गाई है ये पहला गीत का उत्तर है, यानी कि फ्राग एंड आंतवर्थ होता है। फिल्म का नाम जिंदगी और मौत निकली फैफन सस्ता के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। Van het leven heb ik geleerd, voor elke zonsondergang is een nieuw begin. Jab sham ko surya ast hota hai, iska matlab hai savera zarur hoga. Voor elke deur die dicht gaat, gaat er één open.

जैसे कि एक रास्ता जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। जिंदगी चलने का नाम है। एलक फॉर ट्रैक इज एर एन अनकोम्स फॉर एलक फॉर ट्रैक इज एर एन अनकोम्स। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण, हम घर से निकले तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ से निकलेंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। फॉर एलक नीदरलाख इज एर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि तरह पाकन वराक नेमन, पर आप वराक ना लेना। वो खुद ही पाएगा जो जैसा करेगा। निट्स इज फॉल्टोइट सो लॉन्ग एर लेफन इज Nichts ist voltoid, solange Leben ist. जब तक ये प्रकृति है, चढ़ाव उतराव लगे रहेगा। तो इसे आप घबराना नहीं। मुझे पता है कि आप घबराओगे भी नहीं, क्योंकि इवेंट खून इन स्टेरक इंडिविजुअल। आत्मनिर्भर आप में है, शक्ति है प्रभु के आप में।

सुन रहे फाव हिंदुस्तानी रेडियो जिस पर आप और मैं चुन हूँ। आपको ढेर सारा प्यार मिले आपका फाव हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: दिल के सहारे आजा, जरूर से प्यार करे, क्योंकि दिल से प्यार होता है और आपको सुना दे है देखे तो आशा भोसले जी और पहला और आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी, फिल्म वक्त से निकाला गया, ये दोनों बेहतरीन गीत आपके लिए। और यहाँ से आपको हम बहुत से बधाइयाँ पेश करती हूँ पावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानी फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीज़ों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीज़ों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा की आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाउन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

में तो थोड़ा बटम ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटम किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है,
2: ये

बस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति दिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सो न्यूज़कीरक बे हम नाटक कहकर। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं और जिसमें अक्षय खन्ना और जाह्नवी कपूर के

संग कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

के प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए हैं और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

स्त्री टू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

इसे दोहरा दिया जाए। तो क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत की आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: 2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर शिकर करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुरानी फिल्मों का नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है अगर आपके पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।
1: यीशु के बगैर ये शंभू

0: समाज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के ओर हम बढ़ेंगे।

Houseful 5 se nikalagaya ye sundar sa geet. Comedy film जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, जब गिनती में देखे कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं और उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

महफिलें 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में, एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, द यार 70, द यार 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

आप खुश हो, अच्छे बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनने वालों, इसमें कंजूसी ना करें। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good

अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा, जीनातमन जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, दम मारो दम, अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिल के इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पप्पी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है, पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जब तो पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले चले बल्ले बल्ले सब सुनते हैं सुखवार है वीकेंड आ गए है रेड पुश हो या ब्लैक पुश हो उसके तफरा पर रखिए एक बॉल मारिए डोसा पकाइए खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तू बल्ले बल्ले, दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुने थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोल तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोल तारा रा रा रा। ये क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें, देखा जाए इस पे तो है कुछ और। हम इस गाने को रखते हैं, तो ऐसे कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सो रहे थे, चलो हम चलते हैं। आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं देश दाख के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम ज़रूर विदाई लेंगे। देश दाख के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी हरियाली और रास्ता, नई खतीन तो शस्त्र का, जिस पे मनोज कुमार माला जी ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन्स का फिल्म है, मूवी, मनोज कुमार माला जिन्ना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकर दिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकर दिन टू इंसेस्ट का फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता नेकंटिन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और, ये बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, नेकंटिन का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नेकंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई खंसी ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी हम आप लोग के लिए चलते हैं नई खंसी वेफन शस्तक में। जौहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव एंड सेस तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, अंखियों का नूर है तू, अंखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलके हम सुनाते हैं

0: ठीक है।
1: चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एंड महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मिल के सुना, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सप्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पे देखा जाए तो 4 मिनट व्यतीत हो चला है, 5 मिनट व्यतीत हो चला है, 12:05 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमारे लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया अनिल सरजी द्वारा, भैया अनिल सरजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको भैया अनिल सरजू जो भी काम का आप कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे, आपको एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। तो धूप निकली हुई है हमेशा की तरह, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सुनने में आया कि सारा दिन भी ऐसा ही रहेगा मौसम। आप सबका हृदय से स्वागत है। आज दोंदर तक 8 जूनी है, 18 जून है, आप तत्पर है। जो लोग जून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में होंगे, सुबह होगा, शाम होगा, रात्रि होगा, कुछ भी, आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है देन हाग शहर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। देखते हैं भैया चांद रघुनाथ कार्यक्रम सुन रहा है और किसला जी, भैया चांद रघुनाथ जी और किसला जी, आप दोनों को हृदय से स्वागत है। थैंक यू। तो भैया चांद रघुनाथ, अगर जो आप तत्पर हैं तो लीजिए, हम आपके लिए ये गीत चला देते हैं। पहला सिलेक्शन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, इस तरह से आ रहा है।

बहारो मेरा जीवन भी संवारो। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं भैया चांद रघुनाथ के लिए ये गीत हमने चलाए किसला जी के लिए, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी भी सुन रही है कार्यक्रम। मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है और भैया मंसूर को भी। तो लीजिए लगे हाथ हिला के आपके लिए गीत चला दूँ इस तरह से सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए इस तरह से।

0: For more entertainment.
1: ये शानदार दिवस चलाया गया ऊपर फाउ हिंदुस्तानी रेडियो आज दोंदरदख दोंदरदख दोंदरदख आखती यूनिको और ये गीत चला सूत्र मेर के रहने वाली मीला जी और जनाब मंसूर के लिए शुभकामना के साथ मीला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं भी ऐप पर है देखते हैं फ्लिसिंगन शहर फ्लिसिंगन जेलोंग के रहने वाले आनी सरजू मिश्री जी और ज्योति सरजू मिश्री जी आप दोनों को भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हृदय से स्वागत किया जा रहा है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इतनी दूर दराज से जहाँ तक मेरा ख्याल है करीबन 160 किलोमीटर दूर तैराक से देखा जाए आप दोनों को भी यानी आनिस और ज्योति सरजू मिश्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पेश करते हुए चलिए आप दोनों के लिए हमने ये गीत रखे हैं इस तरह से आ रहा है।

थोड़ा सा ठहरो, विक्टोरिया 203, विक्टोरिया 203 में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आज दोनों आखिरी यूनी है तो ऐप की है श्रीमती आनी और ज्योति सरजू मिश्री जो फ्लिसिंग के रहने वाले हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आनी सरजू मिश्री जी, ज्योति सरजू मिश्री जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, देखा जाए ये गीत है निकिती फैफ तख्त का 1985 का, एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, सुनते हैं।

एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। हाँ, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की। ये गीत लिखी गई है गुलशन बावरा के जरिए।

बिल्कुल नहीं जी हाँ, कोई शक नहीं है लता जी और शबीर कुमार मिलके फिल्म गुलामी में आपको सुनाइए ये शानदार गीत, पेश हुआ ओफर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हमने प्लेयर में एक गीत रखे हैं, क्या ख्याल अगर जाए मैं आपको ये गीत सुनाऊं, फिल्म आदमी में से निकाल है नौशाद अली के साज पर इस तरह से।

वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म आदमी में से निकाल कर हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं, मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं मैती मुकेश। जी हाँ, मैती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म मर्यादा, फिल्म मर्यादा के गीत हम, चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

0: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, फिल्म मर्यादा में से निकाले हैं। मेरे पास तो ये गीत सीडी पर था इसलिए नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ कहूँगा, तो ये फिल्म में राजकुमार जी ने काम किए हैं। और लोग हो गए लेकिन सिर्फ राजीव कुमार के नाम मुझे इस वक्त याद है। फिल्म मर्यादा में से हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है कि राजा रानी की कहानी है। देखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत फिल्म उपहार में से, नेगंतीन एनन सेफंद।
1: यहाँ राजा कहाँ है?
2: मैं एक राजा

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की निकाल कर निगत ए नसीब का ये गीत, फिल्म उपहार में से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए देखते हैं, हमने प्लेयर पर रखे हैं लेकिन कहाँ गया ये, तो फिर निकल गया। बहरहाल हाँ, आ गया फिर। चलिए हम आपको सुना रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

वाह क्या बात है, आपने सुने एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं कि प्यार करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इसलिए अगर प्यार करना है, हार नहीं है तो प्यार का इजहार कीजिए अवश्य। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अभी तो देखते हैं, जी हाँ अभी थोड़ा समय अवश्य बाकी है। लीजिए इस तरह से आ रहा है, आपकी परछाइयां में से, मदन मोहन के साज पर।

नहीं जाए रफ़ी साहेब और लता जी, फिल्म अनजाना, फिल्म अनजाना में से निकाले हैं और ये गीत हमने पेश किए आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जहाँ पर आप भी होंगे आपका हृदय से स्वागत है। हमने प्लेन में गीत और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल है। चलो ये मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मिलाप में से निकाले हैं, 1972 नेगेटिव 20 का ये फिल्म है, और चलो सुनते हैं इस तरह से।

मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाएं ब्रिजभूषण के साज पर हमने पेश की फिल्म मिलाप में से निकाल कर नेगंतिन तो इन सैफन तक 1972 का ये गीत। चलिए अगला नंबर हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है उनके पहली नज़र क्या असर कर गई। चलो लता जी आपको बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते।

उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई, लता जी आपको सुनाएं फिल्म अप्रैल फूल। फिल्म अप्रैल फूल में से निकाले हैं नेगेटिव फिर से का ये गीत 1974 का ये गीत शंकर जय किशन के साथ पर आओ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल है देखते हैं। वो दिन याद करो, जी हाँ आप भी वो दिन याद करो और मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ। और कौन सा दिन, कौन सी साल, 1971 का, जी हाँ द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

मोहब्बत की कहानियाँ लता जी और द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए हैं। फिल्म वो दिन याद करो में से निकाले हैं निकती इन सही तक यह शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम देख रहे हैं प्लेयर में हमने रखे हैं लता जी की, लता जी के ये गीत है देखा जाए जहाँ तक मेरा हाँ निकती फैफ तक का ये गीत है और चलिए हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है हिमालय की गोद में से याद हिमालय हमने कहा था याद होगा हिमालय जो उस समय सूरीनाम की बात था। मैं कहाँ पर था तो एक हफ्सी आया बाहर से भीतर उन्हें गंगा गंगा एक बात बतानी है हमने बोलो भाई हमने एक फिल्म देखे हैं कि पोस्टर चपकाया हुआ है हाँ ये पता नहीं कि दुलिक्स का था या इंडिया ओवरसीज़ का क्योंकि इंडिया ओवरसीज़ का फिल्म में द पारल चलाता था और दुलिक्स का जसोदरा चलाता था अब मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा फिल्म का नाम है हिमालय के खौतमेन। हमने सोचा यार सोचते सोचते कुछ देर बाद याद क्योंकि गाना पहले आ जाता था सूरीनाम में ना तो याद आया हाँ निकिती फैफ शस्त्र का ये फिल्म है हिमालय के गोद में। उन्होंने कहा खौतमेन तो बाद में समझा गया कि हाँ गोद में लीजिए हिमालय के गोद में से निकाल रहे हैं इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत।

सारे बगिया खिली, ये गीत पेश हुआ लता जी आपको सुनाए फिल्म हिमालय के गोद में से निकाले 1965 का ये गीत निकली फेफ से का ये गीत, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर जय किशन है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल अगर गलत हो तो मुझे आप बता देना, शंकर जय किशन के साथ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और पेश करने वाले हैं और वो ये है, हमने तो देखे ही नहीं लेकिन चलाते हैं, चलो हम भी सुनते हैं आप भी सुनो।

रफी साहब आपको सुनाए एस देवर्मन के साज पर तेरे मेरे सपने फिल्म गाइड में से निकाले हैं ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं आप हैं और आप सबको एक शुभ शाम पेश करते हुए जी हाँ आप सबको एक शुभ शाम पेश करते हुए आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको गीत सुना रहे हैं। ये क्या ख्याल है

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए लता जी के पास बाद पास नहीं बाद लता जी के बाद लता जी और मन्ना डे है। जी हाँ, इन दोनों के ये प्रेम कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से मन्ना डे जी और लता जी फिल्म पर

लता जी और मन्ना डे जी आपको सुनाए भी हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, चलो देखते हैं आम्स्टरडम। आम्स्टरडम के रहने वाला श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा, श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती जी, इन दोनों के लिए शुभकामना के साथ ये गीत, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए, आम्स्टरडम के रहने वाला श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी वती के लिए इस तरह से।

कि हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर निगेती तुई से सिख का ये गीत, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की। और ये गीत हमने चलाए हैं आम्स्टरडम, आम्स्टरडम के रहने वाले हैं श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी युवती के लिए। भैया हीरा जी और भती जी, आप दोनों को भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। आप लोगों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, वैसे तो अगर लोग सुन रहे हैं और लोग सुन रहे होंगे भी लेकिन तार नहीं करते हैं या ऐप नहीं करते, बहरहाल आप लोगों ने की, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये इस तरह से है।

मेरी ये जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुना है, फिल्म बिंदियाँ बिंदियाँ में से निकाले हैं नेहा तीन शस्त्र का ये गीत और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं।

फिल्म भाई भाई में से निकाले हैं और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और बढ़ते हैं फिल्म कन्यादान की ओर। फिल्म कन्यादान बहुत लोगों ने देखे हैं, कन्यादान में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। निकिति निघन शस्त्र का ये फिल्म है शंकर जय किशन के साज पर। चलिए लेकिन ये गीत आप कम सुनते होंगे क्योंकि कम साइड चल रहा होगा। बहरहाल कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर, लता जी की आवाज़ में फिल्म फिल्म फिल्म कन्यादान में से निकाले हैं नीकती नेक ने सस होनी सोन हत्तर का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है, क्या देखूं क्या देखूं, हाँ रफ़ी साहेब की आवाज़ में

0: जले।
1: रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या ना जले, ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं मैथु मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म है जिंदगी और तूफान निगिन फैफ सैफ तक 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं और शायद आप भी नहीं, और अगर सुने होंगे तो मेरी बैड लक है, मेरी बदनसीबी है। बहरहाल चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से। ये गीत की शब्दें जो हैं, जी हाँ, इसके शब्द पर अवश्य ध्यान दीजिए, बहुत प्यारे शब्द हैं और बहुत मतलब भरी। हिंदुस्तानी में लोग सलामी बोलते रही समझो या के मौत, सुन लीजिए।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए ये गीत हमने निकाले हैं। देखते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान में से 1975 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए एक गीत हम आपको सुनाते हैं और वो ये है, इस तरह से आता है।

गीत गाया पत्थरों ने, यहाँ टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं फिल्म में गीत गाया पत्थरों ने, रामलाल के साज पर महेंद्र कपूर जी और आशा

जी दोनों मिलके आपको सुनाएं, और अगर मैं गलती नहीं बोलूँगा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जितेंद्र जी की पहली फिल्म थी। जी हाँ, जितेंद्र की पहली फिल्म थी, गीत गाया पत्थरों ने, और उसी में से हमने निकाले हैं। अच्छा, तो आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत कहाँ गया। जी हाँ, चलिए ये गीत इस तरह से आ रहा है फाउन।

आंखों आंखों तुमने क्या कहा, ये गीत सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो चलिए एक मुकाबला हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, मुकाबला रफ़ी साहब की आवाज़ है और विजयंती माला के थरकते हुए पैरों हैं। सुन लीजिए इस तरह से।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़ और हेलन विजयंती माला, विजयंती माला की थिरकते हुए पैरे आपने सुने और महसूस किए होंगे। चलिए एक गीत हम आपको और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

ओ ठिले गीत सुना मैं तो मुकेश और आयशा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आज दोंदर दख आखिरी यूनी है, 18 जून है और आप तत्पर हैं और यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। हम जाने से पहले आप ही सभी महानुभावों को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, ख़ास करके अल्फा नंदरेन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ और खिसला जी को, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी और जनाब मंसूर को, और आगे देखा जाए तो फ्लेसिंगन के रहने वाले श्रीमती आनी और उनकी पति ज्योति सरजू मिश्र जी को, और आमस्टरडाम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहे हैं जो कार्यक्रम सुने और तार भी किए और ऐप भी किए। आप सबको भी एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से।

यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश किए। एक बार फिर जिन जिन जिन लोगों ने ऐप किए हैं, तार किए हैं, कार्यक्रम में भाग लिए, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला जोंदा को यानी बृहस्पतिवार को गीत गज़ल के कार्यक्रम लेकर भैया यूसुफ के साथ 8 बजे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है।

और आम किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नीख तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे। और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्टल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना को और कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे क्या हुआ है

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती ससन नहीं खन तक का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आज आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यहां कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यावन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जोनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुम मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले, और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5 on 5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। म्यूजिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: जाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेराबानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों। और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा या उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोग इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंदी और उषा किरण ने, फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर, और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल गई लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म मेरे भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सयार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और एक तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और शबीर कुमार का यह गीत है, जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

ये संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टि के अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग हैं। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की अवस्था अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतार लिया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कच्छप और वराहावतार पूर्णतः पशु रूप में थे। वह नरसिंह अवतार आधा नर आधा पशु रूप अवतार था। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, पर ईश्वर ने तो हमें कितने ही संकेतों द्वारा यह समझाया है कि पशु भी परमात्मा की ही रचना है और उसे प्रिय रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, मम माया संभम संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव

0: कहते हैं कि लाखों समस्याओं के बीच में भी जो खूबसूरत और अनमोल है वो है जिंदगी। पशुपतिनाथ, इस अंतर्गत में बबली जी संदेश रख रहे हैं।
1: इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है, वह सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, सब पर मेरी बराबर दया है। एक कवि ने इन्हीं भावों को शब्दों में कुछ यूँ पिरोया है कि मानव, पशु, पक्षी, लता, पादप, कीट, पतंग सब में प्रभु नित बस रहे हैं, सभी उनके अंग हैं। कहने का भाव है कि इस धारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसलिए प्रभु को प्रिय है। परंतु यह भी सत्य है कि इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वेश रचना है, सर्वोत्तम कीर्ति है। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया। इसलिए ईश्वर यह अपेक्षा रखता है कि मानव में ईश्वर तुल्य गुण हो, यानी वह भी इस सृष्टि की प्रत्येक कीर्ति से प्रेम करे, वह उसकी रक्षा करे। यह मानव का दायित्व भी है, आवश्यकता भी है। और यदि मानव ऐसा करता है तो वह पाएगा कि प्रत्येक जीव किसी ना किसी रूप में उसके लिए हितकारी है, उसका सहायक है। कुछ पशु उसकी खेती बाड़ी में सहायक हो सकते हैं तो कुछ भार ढोने में, कुछ वफादार चौकीदार की भूमिका निभा सकते हैं तो कुछ अमृत तुल्य दूध प्रदान कर माँ की तरह। हर पशु में कोई ना कोई गुण है जिसका मानव सदुपयोग कर सकता है। एक बार आचार्य सुश्रुत से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक जीव में कोई ना कोई ऐसा गुण है जिससे वह मानव को लाभ पहुंचा सकता है, पर मैं यह नहीं मानता, आप ही बताइए जो भी ऐसा कौन सा गुण है।
0: जो बोले हैं जो गटर में होता है ना बबली जी, जो गंदगी पानी में होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले धान लगाते थे सूरीनाम में, तो धान लगाते समय जोंक हम लोग के और पैरों में पकड़ लेता था और खून चूसता था।
1: सही बात, खेतों में होती है, गंदे पानी में होती है, वो खून चूसती है। जोंक में ऐसा कौन सा गुण है, वह तो मात्र इंसान का खून चूस सकती है। सुश्रुत बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक प्रयोग के द्वारा दूंगा। कुछ दिनों के बाद आचार्य सुश्रुत के पास एक रोगी आया, उसके सारे शरीर में घाव हो गए थे। उन घावों में से भयंकर दुर्गंध उठ रही थी क्योंकि उनमें मवाद भर गई थी। आचार्य सुश्रुत ने अपने उसी शिष्य को बुलाया और कहा कि बड़ी सावधानी से एक जोंक पकड़ कर लाओ। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया। फिर सुश्रुत ने उस जोंक को व्यक्ति के घाव में छोड़ दिया। जोंक ने पल भर में ही सारी मवाद चूस ली। तब सुश्रुत ने अपने शिष्य को कहा, देखा परमात्मा की हर रचना मनुष्य को कैसे हित करती है, भले ही वह जोंक ही क्यों ना हो।
0: जैसे कि अभी आपने कहा कि मावात घाव में, जैसे हम लोग बोली लाओ के पीप ना, गंदा खून आदि।
1: हाँ जी, पीप भी कहते हैं, मवाद भी कहते हैं।
0: ऐसा, और वो जो जोक है वो छोड़ दिया गया घाव पे, तो वो गंदगी खींच कर निकाल लिया।
1: हाँ, जितनी मवाद थी उसने चूस ली सारी।

तो विडम्बना यह है कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लाभ के लिए इन पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा है। आज दुनिया भर में लाखों बुच्चड़खाने खुल गए हैं जिनमें नित नई नई मशीनें पहुंच रही हैं। ऐसी आधुनिक मशीनें जो एक मिनट में लाखों जानवरों को मौत की घाट उतार देती हैं, वह भी बड़ी बेरहमी से। फिर इन पशुओं के मांस, चमड़े, तेल, हड्डियां, आंतों, बालों, दांतों, गुर्दे की झिल्ली आदि से दवाइयां, सुंदर प्रस्थान, सजावट की वस्तुएं, बैग, कोट, जूते, बेल्ट और ना जाने क्या क्या बनाकर बेचा जाता है।

पशुधन को गवा कर सिक्कों और नोटों का धन इकट्ठा करने वाले यह व्यापारी उस लालची इंसान के मानिंद हैं जिसकी मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है। पर वह इंसान इतना स्वार्थी, इतना लालची था कि उसने सोचा मुर्गी तो रोज़ केवल एक ही सोने का अंडा देती है, ऐसे में तो मुझे अमीर बनने में बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना मैं इसे मारकर इसके पेट में से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, फिर तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी मुर्गी की निर्मम हत्या कर डाली। एक तेज धार चाकू से उस बेचारी मुर्गी का पेट चीर डाला, पर क्या हाथ लगा, कुछ नहीं, बल्कि अब तो

0: जैसे भी हाथ धो बैठा जो उसे रोज सुबह मिलता था। यही हर्ष होगा आज के इंसान का भी। बेरहमी से पशुओं को मारकर रातों रात अरबपति बनने का उसका यह लालच उसे ले डूबेगा। कुदरत के जीवों के साथ उसका यह भी अमानवीय बर्ताव उसे कुदरत का दोषी बना देगा, जिसका वह उसे भयंकर दंड देगी। इस बात का समर्थन तो अब विज्ञान भी करने लगा है। लगभग 2 दशक तक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और एक सिद्धांत को समक्ष रखा। 20 नामक इस सिद्धांत ने दुनिया के सामने चौंका देने वाला सत्य उजागर किया। यह सिद्धांत कहता है कि विश्व में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि, इन सब का एक प्रमुख कारण जीव जंतुओं की हिंसा है।
1: कहने के तात्पर्य है कि भूकंप, बोले कि अर्थक्वेक,
0: हाँ जी,
1: भूचाल, सुनामी,
0: हाँ, ज्वालामुखी पड़ते हैं,
1: हाँ,
0: जंगलों में आग लग जाती जो
1: ऐसे, तो ये इसके कारण है।
0: हाँ, क्योंकि पशुओं को मारते हैं, इतना जुल्म होता है, तो उनकी चीख पुकार कहाँ जाएगी।

वैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के उत्तर भी खोज निकाले हैं कि कल तक जहां भूकंप नहीं आते थे वहां अब भूकंप क्यों आने लगे हैं। जिस इंडोनेशिया के समुद्र में कभी सुनामी नहीं आई वहां अचानक ऐसा क्या घटा कि ऐसा समुद्री तूफान आया जो कई देशों में तबाही मचा गया। उनका कहना है कि प्रतिदिन जब लाखों जानवर बुच्चर खाने में बेरहमी से काटे जाते हैं तो उनकी भयंकर चीखें, दर्द भरी आहें धरती की परत को चीर कर भीतर पहुंच जाती है। धरती से उठती तरंगों का तापमान बढ़ जाता है, फिर यही तरंगें धरती को चीर कर बाहर निकल आती हैं, जिसे वैज्ञानिक शब्द वाली में भूकंप कहा जाता है।

प्यारे शब्दों में कहा ही था, तुलसी है गरीब की कभी न खाली जाए, जो मुए खाल की चाम से लो भस्म हो जाए। सुनामी के विषय में भी समुद्री विज्ञानियों का मत है कि समुद्री जीव समुद्र के धरातल का संतुलन बनाए रखने में विशेष योगदान देते हैं, पर हिंद महासागर में इंडोनेशिया डीप फिशिंग क्षेत्र है, यानी वहाँ बड़ी संख्या में जलचर पकड़े जाते हैं। ब्लू क्रांति नामक आधुनिक व्यवसाय के तहत तो यहाँ असंख्य मछलियाँ पकड़ी गईं, इस कारण इस क्षेत्र में जलचरों की गिनती ना के बराबर हो गई है। परिणाम क्या हुआ हम सभी ने भोगा, मौत की ऐसी सुनामी लहर उठी जिसने कई इंसानी जिंदगियाँ ली।

भाव यह है कि मनुष्य परमात्मा की रचना पशु पक्षियों को नष्ट करने का दुस्साहस करेगा तो ईश्वर की कुदरत भी मौन बैठने वाली नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि मनुष्य सभी जीवों के साथ प्रेमवत आचरण करे। इंसान की इंसानियत इसी में है कि वह इस सुंदर संसार के हर जीव के कल्याण के लिए प्रयास करे। और सत्य बात यह है कि तब ही मनुष्य का स्वयं का कल्याण भी संभव है। भगवान शिव का पशुपति नाथ नाम यही महान संकेत प्रत्येक मानव को देता है।

सुनने वालों, क्यों ना हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत के ओर, और गीत के बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पशुपतिनाथ, ये नाम क्यों पड़ा और किस प्रकार से बबली जी इस संदेश को रख रहे हैं, और अभी उसके बाद में अनुराधा जी क्या संदेश रखने वाले हैं भक्ति मार्ग अंतर्गत है, तो अभी सुना जाएगा। सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

संसार के सभी चराचर प्राणी भगवान शिव के पशु हैं। यह पशु मल और माया आदि पाशों से बंधे हैं। भगवान शिव इन पशुओं को पाशों से मुक्त करते हैं, इसलिए पशुपति नाथ कहलाते हैं। शिव पुराण के इस वर्णन से स्पष्ट है कि समस्त जीव पाशविक वृत्तियों के पाश में बंधे होने के कारण पशु समान ही है, जो इन जीवों को पाश मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है वही पशुपति नाथ है। इसी कारण से शास्त्रों ने सद्गुरुओं को भी पशुपति नाथ कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे ऐसे महान तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं जो जनमानस को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसे उसकी पाशविक वृत्तियों यानी पाशों से मुक्त करते हैं।

भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में इसी तत्व को उजागर किया है। करुणा खड़का पातें छित्वा पाशा पशक शीशे सस्गनंद जनक सद्गुरु स्वयं मी धीयते। अर्थात करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पाशों को काट दिया, इसलिए भगवान शिव का पशुपतिनाथ नाम तात्विक दृष्टि से जनमानस को यह संकेत देता है कि वह पूर्ण सद्गुरु की शरणागत होकर उनसे ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें जो उसे माया के सभी पाशों से मुक्त कर दें।

0: ये सुंदर संदेश रखा गया पशुपतिनाथ के अंतर्गत में ना बबली जी।
1: हाँ जी,
0: यानी कि पशुओं का पति नाथ।
1: हाँ जी, पशुओं की रक्षा करने वाले,
0: पशुओं के रक्षा करने वाले। और इसमें ये भी संदेश रखा गया कि मानवता जो है हम लोग का वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
1: हाँ जी।
0: और सभी का रक्षक भगवान।
1: हाँ जी।
0: तो पर और भी क्या संदेश लेकर आए हैं आज, क्योंकि आज आप कुछ सुनाने वाले थे कि जो ड्राई फ्रूट होता है ना।
1: हाँ जी।
0: तो उस अंतर्गत में कुछ रखने वाले थे आप।
1: हाँ, ड्राई फ्रूट का राजा सबको पता है कौन है?
0: ड्राई फ्रूट का राजा?
1: हाँ, बादाम।
0: उसका जैसे फलों का राजा आम।
1: हाँ जी,
0: फलों का राजा आम, फूलों के राजा गुलाब।
1: गुलाब।
0: और ड्राई फ्रूट का राजा यानी कि द्रोह फ्रूट का
1: जंगल का राजा भी आपको पता है,
0: शेर ना।
1: हाँ जी।
0: तो इस प्रकार से हम लोग का भाषा कितना सुंदर है ना, कि सब में राजा के पद भी मिला
1: हर चीज को। हाँ जी, लेकिन ये भी है कि लेकिन भारत में ड्राई फ्रूट का राजा बादाम नहीं है, मूंगफली है।
0: मूंगफली बोले तो
1: पिंडा।
0: पिंडा,
1: क्योंकि पिंडा हर कोई खा सकता है, बादाम थोड़ा महंगा होता है तो गरीब लोग इतना नहीं खा सकते।
0: और यहाँ हॉलैंड में तो ये कोई मुश्किल नहीं है
1: ना, यहाँ तो हर चीज मिल जाए,
0: हर समय पे,
1: चाहे बादाम खाओ, चाहे मूंगफली खाओ, चाहे अखरोट खाओ, चाहे पिस्ता खाओ, चाहे चिलगोजे,
0: सब ड्राई फ्रूट यहाँ भरे हुए हैं दुकानों में।
1: सही बात, सही बात।
0: तो दोस्तों, पर आज इसमें से एक संदेश भी रखने वाले हो आप।
1: हाँ जी, थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगी।
0: तो हम पहले गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर संदेश को रखा जाएगा।
1: जरूर।

0: संदेश जो रखने वाले हो आप ड्राई फ्रूट बादाम के बारे में ना बबली जी?
1: हाँ जी,
0: तो आप अपना संदेश को सुनाइए।
1: हाँ जी, बादाम अपने गुणों के कारण मेवों में सर्वोपरि है। अखरोट को छोड़कर अन्य सभी मेवों से बादाम में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 100 ग्राम बादाम गिरी से 655 किलोरी ऊर्जा मिलती है। बादाम में मांस से 2 गुना, दूध दही पनीर से 4 गुना, चना से 5 गुना और शुद्ध देसी घी से 1.5 गुना ज़्यादा ताकत होती है। बादाम गिरी में जल 5.2%, तेल 98.9%, प्रोटीन 20%, कार्बोहाइड्रेट 10.5%, खनिज 2%, कैल्शियम 0.23% और फास्फोरस 0.29% होता है। 100 ग्राम बादाम गिरी में 3.5 मिलीग्राम लोहा होता है। इसके अलावा विटामिन बी भी बादाम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बादाम 2 तरह के होते हैं, एक मीठा बादाम और दूसरा कड़वा बादाम। मीठा बादाम खाने में और कड़वा बादाम तेल आदि सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में काम आता है।

लाभकारी गुण। दिमागी कमजोरी को दूर करने में बादाम श्रेष्ठ है। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। मीठे बादाम के तेल में भारी सरबत मिलाकर पीने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को दुर्बलता दूर हो जाती है। खून की कमी, दिमाग की बीमारियां, नेत्र रोग, हृदय रोग आदि को दूर करने में बादाम लाजवाब है। बादाम पौष्टिक है, बल वीर्यवर्धक तथा शक्तिवर्धक पदार्थ है। बादाम का सेवन आँखों के लिए भी हितकारी है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए बादाम की 5 गिरी महीन काट लें, उसमें थोड़ी सौंफ और मिश्री मिलाकर रात को चबा चबा कर खाएं। बाद में 1 गिलास गर्म दूध भी लें, लेकिन इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ दिनों तक करने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है। बादाम में कैल्शियम अधिक होता है। जिन बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उन्हें बादाम का घोल पिलाने से बहुत लाभ पहुँचता है। इसके लिए 3-4 बादाम पानी में भिगोकर पीस लें, फिर उन्हें 1 प्याला गाय के दूध में घोल कर मिला दें। बस घोल तैयार है।

को पानी में भिगो कर रात को रखें, फिर सुबह छील कर पेस्ट बना लें। इसे शहद के साथ शिशु को चटाएं। ऐसा करने से उसके शरीर, मस्तिष्क और हड्डियों का अच्छा विकास होगा। अपचय तथा अन्य बीमारियां भी नहीं होंगी। बादाम का छिलका हटाकर बादाम को पीस लें, फिर इसका संतरे के रस तथा शहद के साथ सेवन करें। यह हृदय के लिए शक्तिशाली टॉनिक का काम करता है। मीठे बादाम की गिरी और मुनक्का बराबर मात्रा में लेकर कूट लें, फिर इस मिश्रण को मुख में रखकर चबा चबा कर रस चूसें। ऐसा करने से हृदय संबंधी शिकायतें दूर हो जाती हैं तथा हृदय शक्तिशाली बनता है। बादाम कफ कारक होता है, जो रक्त पीत के रोगी हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

बादाम को महीन पीसकर खाने से अधिक लाभ होता है। गर्मियों की बजाय सर्दी में बादाम का प्रयोग अधिक किया जाना चाहिए।

सुनने वालों, जैसे कि आपने सुना कि गर्मियों में बादाम का सेवन कमती करना चाहिए, क्योंकि बादाम गर्म होता है और गर्मी में इससे थोड़े खारिश वगैरह हो सकती है, और सर्दियों में लाभदायक है। सर्दियों में अगर ज़्यादा बादाम भी खा लो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, गर्मियों में नुकसान पहुंचाता है।

दोस्तों, और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुश है ये दुनिया को ना बताइए, क्योंकि लोग अक्सर खिले हुए फूल को सबसे पहले तोड़ते हैं।

0: पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और आज का विषय जो अनुराधा जी अपने ओर से रखने वाले हैं, विषय का बोल भक्ति मार्ग। अनुराधा जी, आप अपना संदेश रख सकते हो।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सबका जीवन मंगलमय होगा और आप अपने जीवन में सुख शांति प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। संजय जी, आज मैं सभी सुनने वालों से जीवन के बारे में कुछ बारे में बात करना चाहूंगी। ऐसा क्यों है कि सबसे शक्तिशाली जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है, परंतु फिर भी उन्हें खालीपन का एहसास होता है। लोग महसूस करते हैं कि सच्चा सुख भौतिक संतुष्टि से नहीं आता है। वे समझते हैं कि एक बार जब वे सबसे बड़ा, सबसे मजबूत जैसे टैग हासिल कर लेते हैं तो वे वास्तव में सबसे बड़े, सबसे मजबूत नहीं होते। वे धीरे धीरे समझते हैं कि आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में उनकी भौतिक समस्याओं को भौतिक समाधानों से हल नहीं किया जा सकता, और तभी वे सुकून पाने के लिए अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं। ऐसा जीवन तलाशते हैं, ऐसा खोजते हैं कि जिससे उनको शांति की प्राप्ति हो, एक जिससे वो सुकून का जीवन प्राप्त कर सके। देखिए, जीवन में हम हर प्रकार का, हमारा जो जीवन है हम अलग अलग तरीके से, हर इंसान जो होता है प्राणी, हर प्राणी अलग है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, तो हर इंसान अपने तरह से जीवन व्यतीत करता है। देखिए, यह प्राकृतिक प्राप्ति का एक मार्ग है जिसे भगवान कृष्ण ने हम में से प्रत्येक के लिए निर्धारित किया है। यह मार्ग केवल एक यात्रा की शुरुआत है, एक लंबी निरंतर यात्रा जिसके अंत में हमें स्वयं प्रभु तक पहुंचने और हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का आश्वासन दिया जाता है। देखिए, हर इंसान चाहता है अच्छा सा एक जीवन व्यतीत करे, सुख शांति मिले और वो भगवान की ओर उसका दिल आकर्षक होता है और वो पूजा पाठ करने लगता है। ये देखिए, ये जो होता है ये एक हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है, एक मोड़ आता है जब वो भक्ति में विलीन हो जाता है। भक्ति वाला वो भक्त जो होता है, वो भले ही आप हम रोज जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, कोई हम कहीं पर बैठकर 24 घंटे पूजा पाठ नहीं कर रहे, पर हम हमारे मन में अंदर एक भगवान के प्रति एक वक्त आता है जो हर इंसान के आता है, जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं और हम उनके बारे में ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। उससे पहले
0: एक सुंदर सा गीत चला दिया जाए अनुराधा जी।

0: वारी जवा लख वारी, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। सुनने वालों, अनुराधा जी जो अपना संदेश भक्ति मार्ग हम सबको सुना रहे हैं, तो अनुराधा जी आगे का संदेश क्या है?
1: देखिए, आगे बढ़ते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। इस कलयुग में जब मन अत्यधिक अशांत है, इस मार्ग पर चलने का सबसे अच्छा तरीका भक्ति योग है। यहाँ तक कि अर्जुन, जो कि अब तक के सबसे महान योगियों में से एक हैं थे, ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने भी भक्ति योग और भक्ति मार्ग को अपनाया और ईश्वर को महसूस किया। देखिए, हर के जीवन में ऐसा समय आता है, किसी के जीवन में बहुत जल्द आ जाता है, किसी के जीवन में बाद में आता है, पर आता सबके जीवन में है। पर ये कहा जाता है कि आप कितनी भी, आप कितना भी धन कमा लें, आप सोचें कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं मेरे पास हर तरह के शौक पूरे करने के लिए, आपके पास अत्यधिक धन है, आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सोचकर कि देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास रहने को आलीशान घर है और पैसे हैं, सब कुछ है, पर और आप भाग दौड़ की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर ये सब होने पर भी आपका मन अशांत है। आप कितना भी पैसा कमा लें पर आपको मन की शांति ना हो तो वो पैसा किस काम का? ऐसा पैसा आप कितनी भी कमाई कर लें वो किसी काम का नहीं, अगर आपका मन अशांत है और आपको मन की शांति ना हो तो। देखिए, कितना भी आपका वैभवशाली जीवन हो, आपको कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त हो, आपका जो आपका काम करते हैं, जहाँ पर जॉब करते हैं, कितना भी है आपको वहाँ पर, आप बहुत अच्छी आपकी पोजीशन हो, बहुत अच्छा आपका काम चल रहा हो, सब कुछ है आपके पास, पर मन की शांति ना हो वो जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं जहाँ पर आपको दो पल की शांति ना हो। देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, जीवन में हर इंसान नौकरी ढूंढता है या अपने कार्य को करता है, और करना भी चाहिए कि अच्छा सोचता है कि मेहनत करता है कुछ पैसे कमाने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, परंतु जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं सबसे सुखी इंसान हूँ, परंतु ये एक भ्रम होता है, और इस भ्रम से हम जीवन बिता तो लेते हैं पर मन की शांति के लिए भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, मैं आगे बात जारी रखूंगी और बात करते रहेंगे, क्यों ना संजय जी एक गीत हो जाए?
0: मैं भी प्लेयर पे एक गीत चुन करके रख चुके हैं अनुराधा जी, तो चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये सुंदर सा गीत हम सब सुने और भक्ति मार्ग आज का विषय है। अनुराधा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का संदेश जो आप रख रहे हैं उसमें से कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जोड़ दिया जाता है ना,
1: बात को समझते हैं। देखिए, हमारे लिए केवल नश्वर भक्ति योग समझने में आसान और पालन करने में आसान है। आपको बस क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे का जाप करने की आवश्यकता है। और आप जहाँ जहाँ पर ये भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आप निश्चित रूप से सड़क के अंत तक पहुंच जाएंगे। ये एकदम से आपके मन को एक बहुत एक शांति सी महसूस होगी। और ये भगवान का नाम, भगवान का आचरण, उनका नाम हरे कृष्णा हरे राम लेने पर आपको बहुत सुकून सा एक एहसास होगा। और ये आपकी, अगर आपने ये भक्ति भक्ति जो मार्ग है अपना लिया, तो समझिए आपका जीवन संभल गया है। जहाँ आपने शुरुआत होगी, बस आपका वो जीवन सफल हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक आप ये जान पाएंगे वास्तव में आप ये भगवान का नाम अगर जापेंगे, आप अपने आप को और गहराई से समझ पाएंगे कि आप कौन हैं और आपका जीवन का क्या मूल्य है, क्या आप जीवन में ये आप क्या करना चाहेंगे। देखिए, ये आध्यात्मिक जो यात्रा होती है हमारी, ऐसी बहुत लोगों के साथ तो ऐसी शुरू हो जाती है। कोई लोग इसमें बहुत इसमें भक्ति मार्ग अपनाते हैं, और जहाँ जिन लोगों ने भक्ति मार्ग का अपनाना, का ये ना सोचें कि इसमें आपको हर चीज़ अपनी त्याग देनी होगी। ये नहीं कि आपको कहीं पर ये मार्ग अपनाने के लिए आपको कहीं जंगल में जाना है या पहाड़ों में जाना है या एकांत में बैठकर कहीं पर अलग होकर, परिवार से अलग होकर कहीं रहना पड़ेगा या संत कोई का भेष धारण करना पड़ेगा या आप अलग से सबसे अलग होकर तभी आप भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। भक्ति मार्ग का आप आम जीवन में रहकर भी आप इसका इसको अपना सकते हैं। और भगवान, जहां आपने जीवन में कितने भी आप व्यस्त हों, कितने भी आप बिजी हों, आप दो क्षण दो पल अपने लिए निकालें, अपने लिए बस उसमें भगवान का नाम लें। आपकी अंतरात्मा को ही देखिएगा कितना एक एहसास होगा, एक शांति का एहसास होगा। एक जीवन में आपके एक अद्भुत एक आपका बदलाव आएगा। और देखिए, हर कोई चीज़ का जब एक शुरुआत होती है एकदम से नहीं आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। तो भक्ति मार्ग भी जब अपनाता है इंसान, तो धीरे धीरे वो आप चाहे उसके लिए थोड़े थोड़ा सा पल, थोड़े से थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में खाना बना रहे हैं या बच्चों को सुला रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हो, काम करते करते भगवान का नाम, भगवान को दो पल के लिए याद कर लें, उनका याद करें, तो थोड़े भगवान के नाम के भजन भी बोल लें और अपना सब कुछ काम जैसे आप करते आए वो करिए। पर ये जीवन जहाँ आपने भक्ति योग और भक्ति योग मार्ग को अपना लिया, तो आपका जीवन यानी कि सफल हो गया। संजय जी, क्यों ना आगे चला जाए और एक और गीत सुना जाए?
0: जरूर, एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके रखे हुए हैं और उसे चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
1: तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें जिसमें कि हम भगवान का को याद करें और भक्ति मार्ग को अपनाएं। देखिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति कितने भी मुश्किल दौर से गुजरेगा वो निराश नहीं होता है, क्योंकि जब दुनिया उसके मिटने का इंतजार कर रही होती है तब कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसे उबारने के लिए आगे आ जाती है। तो देखिए जो ईमानदारी से और सच्चाई से भगवान को याद करता है, उसका उनका स्मरण करता है, आपको जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु अगर आप सच्चे दिल से परमात्मा को याद करेंगे आपको कहीं ना कहीं देखिए अपने आप ही एक कोई मददगार आपको मिल जाएगा।

0: एक पत्थर को भी पूजेंगे ना तो उसमें भी एक उसमें भी एक शक्ति आ जाती है। तो देखिए, कोई भी आप कार्य करिए, कुछ भी करिए, सच्चे दिल से करिए, और आपका जीवन बहुत ही सुंदर आपका व्यतीत होगा, बहुत अच्छा कटेगा अगर आप ये भगवान को याद करें। हैं, आपके विचार और जीवन स्तर का प्रभाव आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी स्पष्ट दिख जाता है। यहाँ तक कि आप इंसानों को छोड़िए, आप अगर कोई स्थान या कोई जगह पर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि उस स्थान पर होने वाला काम का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आप मंदिर में जाकर बैठते हैं तो वहाँ आप जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। और अगर आप क्लब या डिस्को या इस तरह के स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की ऊर्जा आपको अलग ही महसूस होगी, वो एनर्जी जो होती है वो अलग होती है। तो ये देखिए, आप घर में भी जैसे होते हैं, आप कोई किसी के पास किसी से मिलते भी हैं तो उस इंसान की भी ऊर्जा से पता चल जाता है कि वो अगर वो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, तो आपको उसमें ऐसी ऊर्जा होगी कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पर ऐसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मक तरीके की होती है, ऐसी उनकी सोच होती है, तो वो आपको ऊर्जा भी वैसी मिलेगी तो आपको मिलकर उनसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे स्थानों में आप मंदिर जाकर, आपको कितना मंदिर या कोई भी प्रार्थना वाली जगह या जाएंगे, वहाँ आपको बहुत शांति महसूस होगी। और तो हर जगह की ऊर्जा भी ऐसी बदल जाती है जहाँ पर कि आपको पता चल जाता है कि कैसी वहाँ का है, अच्छा है या अनुभव आपका अच्छा हो सकता है, या उसकी आपको जो एनर्जी होती है वहाँ का वो पता चल जाती है। यदि इसी प्रकार कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो अगर यदि आप किसी अच्छे इंसान या आध्यात्मिक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे विचारों के हैं या हैं, उनके पास अगर आप जाकर बैठेंगे तो आपके खुद के विचार भी सकारात्मक व उच्च स्तर के हो जाएंगे। आपके बहुत जो आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो जैसे आप सत्संग में जाते हैं तभी लोगों को अच्छा लगता है कि आप सत्संग में जाएं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे विचार धाराएं होती हैं, अच्छे जो आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी, जो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, बड़ी पॉजिटिव जो आती है वाइब्स एनर्जी, वो आपको महसूस होगी। और अच्छे ऐसे लोगों से मिलने पर भी जो जिनकी सोच अच्छी है, तो आपको उनसे बात करने पर ही आपको बहुत एक सुकून सा, एक शांति सा अनुभव होगा और आपको एक बड़ा अच्छा एहसास होगा। संजय जी, आगे बढ़ने से पहले एक और गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, मैं फिर स्वती मिश्रा जी के आवाज में एक गीत रखना चाहूँगा, जो ये चमक ये थमक, देखते हैं क्या सुनाने वाले हैं स्वती जी।

0: पति मिश्रा के आवाज में सुंदर सा धुन हम सब सुने। अनुराधा जी अपना संदेश को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति मार्ग जो आज का विषय रखा गया है उस पे और भी संदेश रख रहे हैं। तो अनुराधा जी, और क्या संदेश है आपके?
1: तो हम बात कर रहे थे जो ऊर्जा होती है हर इंसान की और उस जगह की, वो भी आपको अच्छी या बुरी में आपको फर्क पता चल जाएगा, क्योंकि आप जिस स्थान पर जैसे काम करते हैं उस काम की ऊर्जा आपको वहाँ की हवा में घुली हुई महसूस होगी। अगर आप मान्यता रखता है, भगवान को याद करता है, उसके उसके विचार भी बहुत अच्छे होंगे, तो ऐसे लोगों के पास आप रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा भी, एक अच्छी एनर्जी फील होगी, बहुत महसूस होगी। जैसे आप ये सोचिए, इसी तरह जो जैसे होते हैं व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो बहुत ही मानवीय होगा, उसके चेहरे पर आपको उसके हृदय की कोमलता, शांत मन, संतुष्टि की चमक नजर आ जाएगी। ऐसे लोग आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लोग हैं वो भगवान को, परमात्मा को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और अच्छी सोच रखते हैं। तो देखिए, अच्छी सोच रखने से, भक्ति मार्ग अपनाने से इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसका आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा हो जाता है, उसकी सोच में बदलाव आता है और उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वे भी भक्ति मार्ग की ओर खींचे चले जाते हैं, उनकी भी सोच बहुत अच्छी हो जाती है। और तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आप में भी अच्छाई आ जाएगी उस इंसान की। और जो अच्छे लोग होते हैं, देखिए उनका आपने हमेशा देखा होगा, जो साधु संत और बहुत जो लोग होते हैं उनके शांत, उनका मुख में कितना तेज होता है, चमक होती है और आपको उनसे मिलकर भी उनकी एक जो सकारात्मक ऊर्जा आपको खींच लेती अपने अपनी ओर। देखिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का आकर्षण होता है, उनकी आंखों में गंभीरता और प्रेम होता है, उनके शब्दों में अपनापन और शीतलता और कोमलता होती है और आपको वो ऐसे अपनी ओर खींचते हैं। एक तरह का जैसे आपको जैसे होता है ना, अच्छाई की ओर आपको लगता है कि वो उसमें अच्छाई भरी हुई है, उनकी उनकी आवाज़ से, उनके चेहरे का, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान की सोच कितनी अच्छी है, वो क्योंकि वो उन्होंने भक्ति मार्ग का एक अपना लिया है। यदि आपको भी अपनी आंखों में प्रेम की चमक, अपनी बातों में अपनापन और अपने चेहरे में बिना मेकअप के सच्चा और विश्वास का ग्लो यानी कि आकर्षण चाहिए, तो जीवन में योग प्रणाम तो करिए ही, पर उसके साथ साथ आप आध्यात्मिकता को भी अपनाएं, भक्ति मार्ग को अपनाएं और अपना एक अच्छा जीवन अपने बनाए। तो ये करने से आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर बदलाव आ जाएगा और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय बन जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज का जो मेरी बातें हैं वो आप अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए संजय जी, एक गीत हो जाए।

अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में यारों, छोटा सा जीवन बस, हर किसी से प्यार करो। के प्रकाश के सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

इतना आसान नहीं है अपने ढंग से ज़िंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा चंद्र जी, जो भारत से हम सबके साथ कनेक्ट थे, और बबली आसरा जी, और कहते हैं मैं हूं आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार, और यही आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुंचे होंगे।

करते रहे और कहा जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनने वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं,

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

मत हो मेरी जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है। जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लिखने वाले भी क्या खूब लिखे हैं, कि दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

सिनी काला गया नहीं खतीन इन सेवंदर से कहीं दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे बीते हुए वक्त और बीता हुआ बचपन

कर वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। किशोर कुमार जी के आवाज में एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना। कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। और जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। तो वही शब्द प्रयोग करो

जहां कभी गर्म ना होए। और कभी जला भी ना दे।

तेरे प्यार का गम माय लव फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग

वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

यह मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानू ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनने वालों, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है।

0: Wiwan, wanneer is deze film, want je zei net 2003 volgens mij, hè? Enig idee welke datum hij, je release datum, wanneer is dat geweest?
1: 28 november
0: 2003. 28 november 2003. Ja, je hebt hem nog een, je zonder zagiet, jo. कलहुना हो के इंस्ट्रूमेंटल से कार्यक्रम को चलाया जाता है इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया विवान
1: रोंड volgens mij 30 करोड़ zoiets
0: रोंड 30 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया और एक फिल्म बनाया गया है जो हिंदी में निकाला गया है ना
1: या क्लोप
0: तो इसी फिल्म से कोई और गीत अभी आप चुन करके रखने वाले हैं हमारे सुनने वालों के लिए सुनो वालो विमान जो और भी संदेश अभी बॉलीवुड के अंतर्गत में हम सबको सुनाने वाले हैं

0: विमान जब देखा जाए कि मैं कल हो ना हो में एक्टर्स वी वार द एक्टर्स दी हब देल खनों में जो अपन कला से प्रदर्शन दिए है कल हो ना हो में
1: नाउ यू हैव द थ्री हॉस्टएक्टर्स दैट्स शाहरुख खान सैफ अली खान एंड प्रीति सिंटा एंड यू हैव टू हैव फॉर सपोर्टिंग एक्टर्स बिफोर जया बच्चन सुषमा सेठ Rima Lagu en nog heel veel andere.
0: Abhi, jab dekha jaye Vivan, to isme ek oud acteur bhi sahyog diye the, Dara Singh.
1: Ja, klopt.
0: Heb je wel eens films van hem gezien?
1: Ja, wel eens, heel vroeger.
0: Heel vroeger. Aur aapko shayad pata nahi hoga, jab Ramanand Sagar ne Ramayan jab banaye the, तो दारा सिंह का रोल उसमें मिला था जो जा करके अल्स हनुमान हैप यू दी वेलस गेसीन
1: या मैं नीट वोलेडिग
0: नीट वोलेडिग और ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले इन द यार बखिन यार सेवंतक के बात है तो सूरीनाम भी दारा सिंह गए थे अल्स वॉर्स्टलार सूरीनाम में भी हम लोग के हिंदू जो हमारे परिवार होते थे कुछ जो पहले शौक होता था वो लोग का वॉर्स्टल करेगा कुश्ती कहते हैं
1: yeah.
0: तो दारा सिंह भी गए थे सूरीनाम में और वॉर्स्टल के अपना झलक दिखाए थे और इसमें भी दारा सिंह भी अपना और कला से प्रदर्शन दिए कोई व्हाट वाज द रोल फॉर दारा सिंह इन दिस फिल्म
1: In deze film was hij de buurman van Priti Sinta en familielid van Shahrukh Khan. En Shahrukh Khan komt dus in het huis van Dara Singh om daar te logeren.
0: We waren nog een vraagje. Waar hebben ze deze film opgenomen? Want het is een Dharma Production, hè? Of een Yash Raj?
1: Dharma Production.
0: Dharma Production. Of de film is opgenomen in India zelf? Of is dat een foreign media kerke liye hai?
1: Nee, de film is voornamelijk voor het grootste deel in New York gefilmd.
0: In New York gefilmd?
1: Ja. Het speelt zich ook af in New York. Dus vandaar dat heel de film in New York is gefilmd.
0: Dan zou je vast wel nog een liedje hebben van die film die zeg maar opgenomen is in New York.
1: Ja, zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Mahiwe van Kolohanaho.

दर्शन 3 में बनाया गया कल होना हो, एक फिल्म जो करण जौहर ने और बनाई, एक फिल्म जिसे हम सालों साल हमारे दिल में बसे रहेंगे। मैं यहाँ तक आपके साथ जुड़े रहे, हमारे साथ देने वाले विवान भी, और आपको हार्दिक से धन्यवाद देते हुए नमस्कार।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सुनने वालों, यहाँ जो कि रविवार के शाम है और रविवार के शाम में हम सब रेडियो में उपस्थित है, एक गीत चला रहा हूँ, एक गीत जो यूट्यूब से निकाल करके रखा हुआ हूँ। जॉनी भाई, आपको पता है ये किसका आवाज़ है?
1: अभी तो सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा भैया?
0: अभी सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा? क्यों ना हम सुनने वालों को भी सुना देते कि ये आवाज किसका है। अगर ये कोई जानत हो तो जरूर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक कलाकार

नहीं, शांता जी का आवाज नहीं, ये शांता जी का आवाज नहीं है। हमारे कलाकारों में एक कलाकार अभी जो हवाम में काफी दिनों से है और

0: अपना बलान बना लो मुझे बलमा। और जॉनी भाई अभी सोच में पड़ा हुआ है, एक जॉनी भाई संगीतकारों में हॉलैंड में जब देखा जाए तो आप किसको नहीं पहचानते हैं?
1: आवाज लोग को जो बोलते हैं और गीत में बहुत फर्क होता है,
0: यानी कि आवाज गीत में बदल जाता है।
1: बदल जाता है जब कोई किसी, आपको शायद मालूम होगा भाई ने, ने, भाई संजय, कितने लोग जो तुतलाते हैं,
0: कितने लोग हैं जो तुतलाते हैं,
1: तुतलाते हैं यानी स्तोत्र करते नहीं,
0: स्तोत्र हाँ।
1: लेकिन अब सोचो कि वो ये कैसे गाना गाएगा, लेकिन जो गाना गाते हैं तो एक बार नहीं स्तोत्र करते, वो गाना वो इसने चलाते। देख लिया जाए एक मशहूर कलाकार जो हमारे सूरीनाम को जो यहाँ रहते हैं हेंगोपाल, नॉर्मल हेंगोपाल जब आपसे बातचीत करेगा तो वो स्तोत्र करते हैं, लेकिन जब वो किशोर कुमार के गाना गाते या और भी गाना गाते वो कभी एक बार स्तोत्र नहीं करते और दूसरा आवाज़ से गाते, इसीलिए गाना पे आवाज़ बदल जाता है यार।
0: पर सुनो लो, आप भी सुनिए ये किसका आवाज़ है।

0: अपना बना लो मेरा बलमा, और ये सुंदर सा गीत जो लिखा गया कि अपना बना लो मोरी बलमा, एक और गीत उसी का चलाता है, क्यों ना शायद अभी आ जाए जॉनी भाई आपके,
1: नहीं आएगा आवाज वही है तो नहीं आएगा
0: नहीं, शायद धुन कुछ और होगा, देखते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, भाई जॉनी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो इसे बता देता हूँ जॉनी भाई कि हमारे गायकों में से मशहूर गायक जो सूरीनामक है, जो सबसे ज़्यादा गाना गाए से उनका भाई, बहुत सा गाना गाए हैं। अगर जब नाम चैतू कह लूं तो उनकर बहन, कितने बहनों उसकर गीत का गाना गाए हैं।

0: सत्या चाहे तू, सत्या त्रिबेनी चाहे तू, यूट्यूब से निकाला गया ये गीत और उनकर गाए हुए गीत है। उन्होंने बड़ा मंदिरों में और बहुत सा जगह गाते रहते हैं और उन्हीं का आवाज़ में ये सुंदर गीत है। पर बिल्कुल जैसे उनसे बात करेंगे आपको तो ये आवाज़ नहीं है।
1: देखिए हर एक लोग जो गीत को गाते हैं भाई संजय, तो उसका आवाज़ बदल जाता है,
0: आवाज़ बदल जाता है,
1: वो कुछ और आवाज़ जो बात करते हैं वो आवाज़ और गीत के आवाज़ वो दो हो जाते हैं। आप भी तो कराओगे करते हैं,
0: अब कुछ कुछ वहाँ भी कोशिश कर जा सीखे के
1: भाई क्या ये फरकलाप तो भैया संजय भी कराओगे गीत गाते हैं तो उसका आवाज़ भी वहाँ पर कुछ और है। मैं कुछ बताओ भाई संजय, आपकी रामलीला के बारे में कैसे बातचीत है?
0: भाई रामलीला तो यहाँ हॉलैंड में बिल्कुल बंद हो गया था ना, ये लास्ट यार लास्ट ये अफलोपद संयम तो हो ही नहीं कुछ, और अभी यहाँ फिर स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि सूरीनाम में अभी भी सूरीनाम भी कम हो गया है, पर भारत में जो नवरात्रि से पहले तो जनवरी में शुरू हो जाता रिहर्सल करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पहला नवरात्रि में जो मार्च अप्रैल में होता है तो वहाँ पर सभन अपना नौ रोज के लिए अपने हर एक स्थानों पे, दिल्ली में हर एक स्थान पे और जा कर के रामलीला होता है। और ख़ास करके त्वेदा रामलीला जो जहाँ पर काबुल है दशहरा होता है, जहाँ पर रावण का और पुतला बना करके जलाया जाता है, तो वो तो हॉलैंड में वो नौ दिन तक यहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मुश्किल हो गया है तो मैं इस पे नहीं मानता हूँ, मैं इस पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ लोग भी इस समय सुन रहे हैं हम लोग के साथ, और मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस देश में जॉनी सुरजबाली है वहाँ तो रामलीला ही करवाई के रखेगा
1: पंडित साथ है लेकिन भाई संजय एक बात और है, सूरीनाम में तो चलते हैं नौ रोज चलते हैं वहाँ रामलीला, और भारत में कैसे है वहाँ?
0: भारत में हर देखो अब जहाँ मेरा परिवार रहते हैं ना दिल्ली में, तो वहाँ पर अब दशहरा वाला जो दूसरा नवरात्रि है वहाँ पर तो ये जूनी मई में गर्मी होता है, तो जूनी में गर्मी अभी होता है और जुलाई में तो बरसात आ जाता है। जब बरसात आ जाता है तो गर्मी जो कट करके 40 से ऊपर रहता है और हो जाता है 32-35, धीरे धीरे अगस्त तक गर्मी और थोड़ा 30 तक पहुंच जाता है, और जुलाई के बाद में वहाँ रिहर्सल शुरू हो जाता है, सब अपना ओपनिंग शुरू करने लगते हैं। और ख़ास करके जहाँ हमारे परिवार रहते हैं वहाँ छत पे,
1: और छत पे होता है
0: हाँ दुसैन
1: ओपनिंग होता है
0: हाँ डाक पे, और लोग आ करके रिहर्सल करते हैं खूब। वहाँ मैंने बैठा था और मैं सुन रहा था, बातचीत हो रहा है कि भीड़ भाड़, वैसे तो उतना भीड़ भाड़ नहीं, तो इस बात को पता चला कि वहाँ आप रामलीला का रिया जो हर साल करते हैं फिर भी हाँ, और ये है कि एक ही आदमी नहीं उसमें, वो है कि उसमें है कि दत्तर दो लोग पे जो इस साल हाँ इस साल नहीं खेले उसे मौका मिला तो अगले साल मिलेगा, और उसमें एक दूसरे को जोश देते हैं।
1: लेकिन वहाँ पर सब कहाँ खेलते हैं?
0: यहाँ वहाँ जो अपना परिवार है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक रामलीला मैदान कहते हैं अनहेल ओप प्लेक, जहाँ पर यहाँ के लोग भी जा कर के वहाँ पर सम्मान को प्राप्त किए हैं कि यहाँ जो भाई बालादीन लोग जो नाटक आदि खेले हैं और वहाँ पर जा कर के क्या कहते हैं सम्मान को प्राप्ति किए वहाँ पर, सम्मान खूब सम्मान किए है हॉलैंड से, क्योंकि भारत ये चाहते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति और संस्कार ये बढ़ते जाए। अब देखा जाए मोदी जी आए हॉलैंड में तो सब बात सबको नहीं पता है, पर कुछ बातें हैं कि जो हम लोग सुन लेला कि हम लोग के हिंदी स्कूल जो यहाँ पर है पांच गो सनातन धर्म स्कूल और फाहोन के लेकर के छः और शोन और फाहोन भी, तो वो इतना प्रशंसा हो रहा कि हॉलैंड में हो करके और ये सब कार्य को करते हैं इट्स ऑन ट्रोथ्स द साइड हमारे हिंदुत्व के लिए
1: क्लोथ,
0: और वो विष्णु स्कूल के और प्रस्थान डाले पर कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के कारण मीडिया में ना आवे सब और इसी प्रकार से अभी जब ग्वलनी हेलमाल अफवाई का फन जो प्रश्न रखे आपकी हम रामलीला क्या करते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग रामलीला खेलने वाले हैं जो अगले 5 जून आ रहा है तो कोनिंग क्लकस हॉबर में यहाँ हम लोग को अवसर मिला है तो वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम एर्स्ट खदेलता जो खराता से तो इधर खदेलता में जो जिसके खाने पीने के साथ तो कुछ एंट्री भी लगेगा
1: जरूर लगेगा,
0: पर ख़ास करके हम लोग के अथे संविश्वंद्र है दच दत हम लोग की हम अपना कार्यक्रम कौन इंकल कस्खाउबेरख में देख सकते हैं, तो खूब मन तन से काम किया जाए और हमारे जो कलाकार है फाहोन स्कूल से जुड़े हुए वो लोग भी दिखाएंगे कि उसमें रामायण बहुत बड़का महासागर एक ग्रंथ है जो हम लोग के कितने ग्रंथ है पर महासागर है और उसमें से एक छोटा सा झलक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।
1: अच्छा भाई एक और सवाल है, आप तो यानी कि बखलाइदर हुए और सब करते हैं, मुझे एक डायलॉग सुना दो, आप तो सबके डायलॉग जानते हैं सबके, एक जबरदस्त डायलॉग आपके जो रामायण में है या मतलब कि रामलीला में है आप हमें और हमारे जनता तक ही सुना दो।
0: उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिलचस्प लगता है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वो टुकड़ा रामलीला का जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि राम और सीता का धनुष यज्ञ से उनका और कैसे सीता को प्राप्त किया उसमें ये संदेश रखा जाता है कि हमारे बच्चों ओंस केंद्र वे इतफाक ओंस द फरहाल फन ओंसनी और वे खान फाक साम वो उन क्या कहते हैं बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अपने बच्चा का मुड़न संस्कार जरूर कराए, पर कुछ चीज है जो हमारे धर्म से जैसे कि भी हमने कहा कि सभ्यता संस्कृति और संस्कार इन तीनों चीजों पर पहले हमारे उनसे दखीन राजसी सखमार जो भारत को अख्तिंद्रिय सैफन तक में छोड़ करके और भारत से गए सूरीनाम, तो सूरीनाम में जा करके संस्कार को पकड़े रहे पहले और जा करके विवाह भी होते थे एक दूसरे के साथ तो जिसे हम जानते ब्रह्म विवाह से और वत ओंस जो हम लोग का संदेश है ये धनुष यज्ञ से कि संदेश ये हम लोग रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों हमारे कहानी जाने अपना जो फ्रिंट या फ्रिंदेन को जब वो वनेरत सो फेर इस दन बोव्यस किस्त फनो हमारा विवाह होई और हमारा विवाह किस प्रकार से होई ब्रह्म विवाह होने से लव कुश जैसा पुत्र को जन्म होता है और उसी कारण सिटफेल अख्तर है मुद्नित खान खलाइक ऑफ द नाम में हमारा धर्म भी रहेगा, धर्म रहेगा इस कारण कि हमारा धर्म में हम लोग के कोई भी कार हम लोग के जो कुछ संस्कार है 16 संस्कार है तो 16 संस्कार में सब देखा जाए कि चार को पे हम लोग ज्यादा ध्यान देला, पहला वाला है जो मूडन संस्कार, जबकि अभी तक हॉलैंड में हम लोगन गोरे लोग जो गर्भधान संस्कार ये सब कराते हैं
1: कराते रहे
0: अभी तक।
1: अच्छा
0: वही माँ कनत मई, पर हम लोग हिंदुस्तानी उस पर ध्यान नहीं देते
1: नहीं,
0: और गर्भधान संस्कार उसके बाद में और भी करण संस्कार सब कान छेदाई वाला संस्कार सब हुए हैं, जनेऊ संस्कार विवाह संस्कार और लास्ट वाला संस्कार हुए हैं जब हमारा वो हाँ, पर फाक वो वाला जाना वाला तब बड़ा देर हो जाए जब हम अपना जीवन में सोचते हैं हम जीवन को समझ लिए, पर जब समझने को आने लगता है तब जाने का वक्त हो जाता है,
1: करना है। हाँ,
0: तो दौरो खोजो पंडित।
1: लेकिन और एक डायलॉग सुनाते हैं
0: अब भाई, अब आप वही में से हम घुमा रहे थे आपको, पर फिर आप हमें लेकर उसी ओर ले जा रहे हैं। उसमें से एक डायलॉग नहीं, एक एक एक एक एक खदेलते जो हमें बहुत पसंद है।
1: अच्छा सुना दो।
0: जहां पर परशुराम जी जो जा करके जब धनुष को टूट जाता है तो वो अंदर आते हैं बड़ा क्रोधित होकर के, मैं क्रोधी हूँ परशुराम के आवास, और परशुराम के आवास में आते हैं, और आप नाटक न रामलीला वाला आदमी हो
1: नहीं, नहीं।
0: आप वो करवाना चाहते हो, मुझ में वो है ही नहीं,
1: नहीं
0: पर परशुराम बड़ा क्रोधित होकर के आता कि किसने ये धनुष को, किसने ये दुशासन किया है, ये धनुष जो शिव का धनुष है किसने तोड़ा है। तो उसमें बड़ा टड़क भड़क दिखाते हैं राजा जनक जी जो अपने ओर से कहते कि ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी है, और लेकर के अयोध्या सुपुत्र राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं।
1: तो लक्ष्मण भी कुछ बोला था,
0: तो लक्ष्मण भी
1: तो
0: अपना
1: कौन से डायलॉग बोला था,
0: लक्ष्मण कहते कि कि बड़ा आप में बचपन में तो मैंने ऐसा ऐसा कितने सारे और धनुष को तोड़ दिए, तब आप नहीं आए थे तो आज क्यों आए, और इस प्रकार से छोटा छोटा बातें हैं। पर सबसे मूल्य हमें सबसे अच्छा लगता है इसमें से, जब ब्रह्म ऋषि जी जो उसे राम को आदेश देते हैं कि जाओ और भगवान परशुराम को प्रणाम करो, तो राम जा करके भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं, तब परशुराम जी कहते हैं कि अरे वाह, मीठी मीठी बातों करके और मुझे भी अपमान भी कर रहे हैं, तो ये अब मैं भी थोड़ा गर्म होने लगा।
1: हाँ।
0: पर काफी इतना
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: कि संदेश बड़ा अच्छा लगता है वो।
1: अच्छा, जरूर, जरूर।
0: और देखने वाला चीज है,
1: देखो जब रामायण चलते या महाभारत चलता है जो लोग जानते हैं और उसके बारे में आप बताते हैं तो सब
0: हाँ
1: रामायणर होता है,
0: तुरख ब्लिक
1: तुरख तुरख आते वहाँ, ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, कारण की जो इतिहास है पंडित जी भाई संजय, इतिहास लोग बदल नहीं सकता।
0: हाँ, पर ये हमारे कथाएं जो है ना
1: वो बदला नहीं सकता।
0: हाँ, पर वो ऐतिहासिक रकम से शायद लिखा हुआ है पर इतिहास नहीं है, अतः जीती जागता कथा
1: कथा और उसको और बदल नहीं पाएगा।
0: हाँ, उसमें बदलाव नहीं आएगा कभी,
1: क्योंकि एक नाटक जो हम सब लिखते हैं या एक फिल्म बनाते हैं या एक गीत को हम गाते हैं भजन छोड़ाकर, तो उसमें आप कहीं पे थोड़ा लहसुन डाल देते हैं, कहीं प्याज डाल देते हैं, कहीं मसाला डाल देते हैं, कहीं मिर्चा डाल सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है जो हमारा वेद के है या कोई भजन की गीत है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो है आपको वही बताना पड़ेगा।
0: शायद धुन उसमें कुछ बदल सकता है, आवाज किसी का बदल सकता है, पर संदेश वही,
1: संदेश आप बदल नहीं सकते हैं। हम सब जो कीर्तन भजन करते हैं तो एक एक भजन भजन होता है, बीते हुए दिनों में हमने गए थे रुद्राक्ष रुद्रान कैसे है रुद्र मंदिर में,
0: रुद्रधाम,
1: रुद्रधाम में वहाँ पर हमने शिव चालीसा को गाए, जब शिव चालीसा हमने गाए तो उसके बाद में अब वहाँ कथा होने लगा तो एक एक स्वामी जी व्यास पर बैठे थे तो वही शिव चालीसा के कुछ कथाओं बताने लगा, तो जो जो वोर्थ स्वामी जी बताने लगा वो सब वोर्थ वो शिव चालीसा में मुझे मिला कि देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कारण कि हर एक भजन में, हर एक गीत में जो जो जो इतिहास का है वो सब में बहुत वजन है भाई। और जो नहीं समझेंगे तो सोते तो होने
0: गीत है,
1: ये गीत है,
0: पर उसमें से जो गहराई है,
1: हाँ।
0: जो उसमें
1: हाँ।
0: क्या कहते उसमें से जो निकालते हो, देखो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु बिना तो कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: तो गुरु जब संदेश उसी में से इतना गहराई निकाल ली एक ही। अब जैसे आप कहे कि शिव चालीसा, शिव चालीसा में से एक ओर से संत, क्योंकि स्वामी ऐसा ही नहीं बन जाता, टीका ऐसा ही नहीं लग जाता,
1: नहीं, नहीं।
0: जरूर कुछ है, कुछ लोग है जो ऐसा ऐसा आदमी नहीं जाएंगे, पर संत मुनियों जो अपना दृष्टि डालते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा सुंदरता मिलता
1: है,
0: बड़ा
1: है, बहुत गहराई है, बहुत
0: आनंद उसी से हम
1: प्राप्त बहुत बहुत। आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और उसका अंत नहीं भाई,
0: ना ना।
1: अब हनुमान चालीसा जब हम सब गाते हैं भजन कीर्तन के, तो हनुमान चालीसा में हर एक वर्ड जो है हनुमान जी के बहुत मूल्य है कि वो क्या क्या किया है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर कहाँ तक वो गया, उसका 40 लीला उसमें बताए गए हैं, उसके गहराई बहुत। कितने लोग जो हनुमान चालीसा गाते हैं ऐ तो थोक जाते हैं, लेकिन उसके गहराई में कभी जाओ तो देखो उसमें क्या क्या हनुमान जी किया,
0: वर्णन किया,
1: वर्णन किया। अच्छा ठीक है, तो कुछ हो गया है हम सबका आज रामायण के बारे में। आप बताओ रामायण तो आप रामलीला तो आप करते हैं और आगे के प्रोग्राम क्या करेंगे, उसके बढ़ंती तो होना चाहिए ना।
0: नहीं बात ये है कि देखो भाई अब शायद ये बात लाइव हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोस्त से भी जो सुन रहे हैं, और इस पे जरूर मैं ये धरना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ रामलीला का बात होए तो उसमें से सबसे पहले हुए है कि जॉनी के क्या हाल है, जॉनी का करे है शायद। तब इसमें अब ये सवाल ही आप किए तो, और ये मत समझना कि ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पर ये मेरा बात नहीं है। अब पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ उपस्थित थे तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि हम और हैन जो हमारा टेक्नीशियन है बार बार एक ही ओर आपके घींच के ले जा रहे थे, और आप हम लोग से छोड़ छोड़ करके दूसरा ओर निकल रहे थे, पर नहीं पर हमारे
1: बात नहीं करूं घुमा फिरा कर तो ही के लपेट। संजय भाई बताओ फाहुन क्या क्या करते हैं इसमें?
0: फाहुन रेडियो के बात बोल रहे हैं या फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो? इस समय जो देखो आप सुबह से आज रेडियो लगे हुए हैं, फाहुन जो हमारे कोलेई खास, उसमें से मुझे कभी कभी कुछ वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सबसे यंगस्टर कहलाता हूँ, तो उसे सबसे अच्छा लगता है बस वही बार। पर हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और देखो फाहुन रेडियो का करो का खुरूप जो है अभी एक बार लाइफ नहीं आया, इस पे काम करना है, और सब इंस्ट्रूमेंट जो हो चुके हैं स्टूडियो के जो करो का लाइफ लाना है, पर हमारे जो सभापति है करो का ग्रुप का भाई गंगा जी जो रविवार को अभी आने वाले मेरे ख्याल से, क्योंकि आज सुरेन जी जो आज हाँ तो अभी आने वाले, पर उनके ओर से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आ रहा है, और फुल हर बार फुल होते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ हमारे समय पे जो हम हमारा ज्योति का प्रकाश के समय पे स्टूडियो बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा और स्टूडियो में हमारे सभी को कलाकारों जो करो को करते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारे देखो हम लोग में ये है, जितना हमारे कोलेखा से सब कुछ न कुछ और करते हैं। हम लोग कैसे बोले, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक इनर लोग होते हैं जो सिर्फ अपना परिवार, अपना घर में अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं, जाते हैं नौकरी पे, वो फिर वापस आ करके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को साइकिल में हवा भरते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सिर्फ उसके लिए जीते। पर ये फाहन वाला को अवतर कहते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये जीते हैं औरों के लिए, उसमें मजा लेते हैं उसमें। अब देखा जाए जॉनी सुरजवाली के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पर खोलांत में कई मंदिर में जो भजन गाते हैं, ना कि भजन सिर्फ कहां खरोता अक्तिफिताइत होते हैं, तो आप जब वहां ना हो तो थोड़ा अधूरा पड़ जाए। अब देखा जाए अमारा में पिछले साल जो 8000 लोगों, 8000 हिंदुस्तानी जो वहां पर आए, और उसमें आपके कार्यक्रम कितना सुंदर रहा
1: भैया, अरुण
0: ब्रिजमोहन का कार्यक्रम रहा,
1: कार्यक्रम रहा, सब कोई मिलजुल के किया। आप भी बहुत काम किया है।
0: नहीं, हम लोग भी अपना काम करते, पर कहते कहने की हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ में लगा,
1: अपने काम सब किया है। और ऊपर में जो मंदिर आप लोग बनाए थे अमारा में, वो तो हमने देख के दंग हो गया भाई, वो जो उतना बड़ा शिवलिंग थे।
0: हाँ ना,
1: आप सौका पहिर के सौका में कोसू में और पूरा अमारा आपने चल कर और छान दिए।
0: अरे बस
1: साथे साथ
0: मस्ती मस्ती होता,
1: साथे साथ शंकर भगवान के विवाह के भी कार्य आप बना दिए।
0: हाँ, बस हो जाता है,
1: आप बहुत महान है भाई।
0: नहीं नहीं, हमें नहीं, पर जो होना देखा जाए, पिछले साल हम लोगों ने, अब आप भी थे वहां, कि दिवाली का कार्यक्रम पौलकुरी को लान पे, भाई हेमंत लक्ष्मण का कार्यक्रम, तो उन्होंने भी देखा जाए कि खूब मन तन से कितना बढ़िया कार्यक्रम बनाए, और जा करके वहां हम लोग भी सहयोग दिए खूब मन तन से। और ऐसे हम लोग के हिंदू का कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश में पिछले साल, देखो आप तो उस समय सूरीनाम में थे, पर सभी ये आशा रखते थे कि आप यहाँ होते, दमेरन में मूर्ति स्थापना हुआ, 5 रोज का यज्ञ,
1: जानते हैं उस समय हम सूरीनाम में रहे, वहाँ से हमने लाइव देखा आपको।
0: हाँ,
1: और मंदिर को कैसे वहाँ कारोबार होता है,
0: तो देखो हम लोग ने
1: कितने रोज के प्रोग्राम, वहाँ 4-5 रोज चला था ना,
0: 5 रोज का यज्ञ था,
1: यज्ञ वहाँ में बुलाए थे भैया हैंक फोर्स इधर, वो चाहते थे कि जो दिन स्थापना है वहाँ पर हमें कीर्तन करी, मैं क्या करूँ, ये दो जहाँ तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन अब आने वाला अब साल में हम सब लोग को बता देते हैं कि रेडियो फाहुन के फाहुन, रेडियो फाहुन जो रेडियो चलते हैं, हम सब अपका रूह का खुर बना लिए हैं, और अब हम सब बनाएंगे चौथा ग्रुप टीम फाहुन का। तो आने वाला साल में होगा भाई संजय के साथ में, हो सकते शायद कृष्ण मंदिर के साथ में,
0: नहीं वो बात भी हो गया, आज हुआ सभापति से कृष्ण मंदिर से, मैंने उसके कानों में डाल दिया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि भाई बाबू जो सभापति है वहाँ का, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम तो सहमत है, और हम वो तो और भी कुछ करना चाहते हैं,
1: ठीक है,
0: पर अभी उसके बारे में बातचीत होगा, क्योंकि
1: अभी बहुत फ्रूह।
0: हाँ,
1: तो अब आने वाला साल में, बीते हुए साल में तो हम सूरीनाम देश में थे, यानी इस साल में तो हम सूरीनाम में थे, तो यही आशा है जब भगवान चाहेगा तंदुरुस्ती ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो अब की होली हम जोर तोर से मनाएंगे, और चौताल ग्रुप भी हम सब सिद्धि करेंगे, आप भी हैं और गंगा भैया हैं फाहुन चौताल ग्रुप, साथ ही साथ होलका भी जलेंगे, और जनता को अल्फाज कान में हमने डाल दिया कि तैयार रखना।
0: हाँ, पर ठंडा होगा ना
1: यार, बोले जहाँ बसे वहीं सुंदर देसू,
0: और मिर्च और यास पहन लो तो बस
1: सब हो जाएगा,
0: तो कई दिन में जलावल जाइए खूब मन तन से, और इसमें थोड़ा से मैं और डाल देना चाहता हूँ कि मेयर दान फेयर तक यार से वो फॉरगिविंग को मांगा जाता है और मिलता है भी सरकार। अभी पिछले साल जो फॉरगिविंग हमने मांग किए तो थोड़ा देर से हो गया था, तो जो फॉरगिविंग देते हैं तो वो कहा कि ये तो हर साल ना मांगता है। कहने के तात्पर्य ये वो जानते हैं कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, अभी हम लोग चला रहे तो अब से अगले साल कुछ ज़्यादा तादाद में वहाँ पर ठंडा में खड़ा हो करके और कुछ व्यवस्था करेंगे कैक डोर में। और ये जो भाई महेंद्र गुदर के रखा हुआ उनकर मामा लोग के, शुरू में तो ये कार्यक्रम होता था मालीफेल्ड पे, तो फिर उसके बाद में दिया गया कैक डोर, और तभी से 40 साल से ज़्यादा हो गया कैक डोर का जो कार्यक्रम होता है। तो अगले साल खूब जोर
1: हो सकता है, शायद एक टेंट भी हम सब रख सकते हैं।
0: नहीं, टेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि टेंट का भी व्यवस्था करना पड़ेगा।
1: तो देखो क्या होगा, और सुनते हैं कि अच्छा चलेंगे। और आप भी अब देखो मंदिर में भी बतिया चुका है, और अब देखो नवंबर से हम सब शुरू करेंगे यानी कि ओपनिंग।
0: पर उस और जरूर वो तो नवंबर से शुरू करेंगे,
1: नहीं नवंबर से शुरू करेंगे।
0: पर आप ये जवाब नहीं देते जॉनी भाई कि आप रामलीला के क्या करा रहे हैं।
1: वो आपके क्षेत्र पंडित जी।
0: नहीं, हम लोग तो काम करना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जहां पर आप जो उसमें हाथ धर देंगे तो वो हो जाएगा।
1: भाई संजय, रामलीला जो है जरूर चलाना चाहिए, लेकिन काम बहुत बड़ा है, उसमें एक दो आदमी का संयोग से नहीं हो पाएगा। अगर ये बड़ा करना चाहते हैं जैसे सूरीनाम में लोग करते हैं, फेल्थ पे करना चाहते हैं, या कोई बड़ा साल में करना चाहते हैं, बड़का हॉल में, तब ये बात जानो कि पूरा हॉलैंड के लोग आएंगे, ओनाक्सी सिर्फ दनहाक के लोग आएंगे। आप करते हैं आपको थियेटर भर जाते हैं, लेकिन जब और बड़ा करेंगे, दो हफ्ता चलेंगे, शुक्र शनिचर अतवार और हर उम्र में करना पड़ेगा। कारण कि जब बाहर आप रामलीला करेंगे जैसे सूरीनाम में या भारत देश में लोग करते हैं, तो गर्मी चाहिए, फल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डेकोरासी चाहिए, काम बड़ा। ओम दिल अलमाल तेरियाली शेर मुत खुद स्टीफ और खानिशान से पैस्तान, यानी कि आप जानते हैं काम बांटना पड़ेगा। काम नहीं बांटेगा तो काम नहीं होगा। अल अफ डीलिंग मुचिया फ्रदीलर कि तुम्हारा क्षेत्र, ये तुम्हारा है, तो 10 लोग को आप जब काम बांट देना तो काम हल्का हो जाएगा। एक दो आदमी हो परसों अंदर फ्रदील तब हो पाएगा भाई। और जो सी आदमी चाहिए, ना कि जैसे 7 बजे स्प्रा करे तो 9 बजे आए, नहीं ऐमें करे, आप तो जानते हो वो लोग भी होता है। तो ये सब बांध बहुत लंबा है, बड़ा है भाई। इसके बारे में जो अगर करना है तो मिलजुल के हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, जब भगवान चाहते हैं, जनता के आशीर्वाद है, लोग चाहते तो हो सकता है, लेकिन इसका और खानिशान सी जबर होना चाहिए।
0: जरूर और खानसासी जबड़ होना चाहिए, बगैर और खानसासी कुछ नहीं हो पाता। पर छोटा सा, छोटे मुंह बड़े बात, छोटा सा एक ही व्यक्ति और शुरू किया तो 8,000 लोग को अमार में धल दिया। तो कहने के तात्पर्य यह है, हम लोग का अक्तिफिताई था जो मिलन होता है साल में सैन इन द मोय पेरियोड, और जरूर शायद हम लोग जो नवरात्रि होना चाहिए, रामलीला होना चाहिए दूसरा नवरात्रि से पहले, पर वो ठंडा समय है पब्लिक, क्योंकि देखा जाए कि ब्रसल, बेल्जियम, इंग्लैंड, डच्सलैंड, यहाँ भी हमारे हिंदुत्व है
1: बहुत,
0: एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। और अगर जो हम लोगों ने वो मोई प्रोखामा लेकर एम्बेसी के पास जाए तो वो लोग हम लोग के मदद करने के लिए तैयार है,
1: ठीक है।
0: पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान बनकर सब पार करा ले। अब वो मैं हवा में तो नहीं देख रहा हूँ कोई और के।
1: ये बात है, ये भाई संजय बहुत लोग है, आप भी तो है, कितने कितने प्रोग्राम करके तो चीज़
0: देखो है। कहने के तौर पर ये है हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर लेते हैं, पर बात करने से नहीं, ये मुद इक्वालिटी आई तो है भाई। ये जैसे कि अभी आपने कहा रिस्फेल वर्क और चलो 9 दिन के ना सही, हम तो 45 मिनट वाला और वही 45 मिनट वाला हम लोग के चाहिए 5 तक मिनट में अफरौंद करेंगे, मैंने बोला 5 तक 10 तक मिनट में, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम बनाते हैं गोरे लोग तो वो लोग अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रक पकड़ते हैं। हमारा प्रोग्राम जो 45 मिनट के है तो उसे हमें 30 मिनट में प्रेजेंटेयर करना है, प्रभाव भी पड़ना चाहिए ना, प्रभाव हम जल्दी जल्दी आकर के काम करेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा,
1: आदमी समझ नहीं पाएंगे
0: कुछ और प्रभाव होना, प्रभाव तो डालना है, वही तो संदेश है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर हमें उसका मतलब नहीं वो हमें समय नहीं दे रहा तो हम ना करूं, हमें तो आगे बढ़ना है,
1: सही बात,
0: क्योंकि हम है आज है, पता नहीं कब रहेंगे, करना
1: कल तो किसने देखा,
0: कल किसने देखा है
1: भाई साहब। नहीं, क्वाट फोर हो गया है 7 बजने में,
0: क्वाट फोर हो गया है 7 बजने,
1: एक घंटा हम लोग 3 बजे आया, कुछ लोग कुछ सुना दे, कुछ
0: एक गीत चला देते हैं।

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों सुनने वालों, अभी हम भाई जॉनी जी के साथ कुछ संदेश को रखे और देखा जाए कि रामलीला जो हॉलैंड में होने वाले है और अत्यंत सुंदर है जो कि हम लोग कोशिश करने को जा रहे हैं। कोशिश भी ये है कि फाहुन भी अपने ओर से जो रामलीला शायद 9 दिन ना सही पर 2-3 दिन के लिए भी कुछ और लिखा जाए और हम लोग भी प्रस्तुत कर सके। और भी गीतों जो हमारे प्लेयर पे रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार हमारे कंप्यूटर ने ट्यून करके रखे हैं।

0: सुन वालों, और यहाँ पर हमारे जो कुलेखा साथी सीतू दत्वा तो चमके है भाई यूसुफ जी, जो अपना कार्यक्रम के लिए लोगन भाई तनी से 8 बजे से आप लोग के कार्यक्रम हम लोग को थोड़ा अवसर छोड़ देवल करो, कुछ सुना दो अपने लॉय सरास के कि अभी क्या लेकर आने वाले हैं आप सब।
1: जैसा सब कोई के मालूम है कि हर सोमवार के हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक गीत गजल कर रहा हम भाई गंगा।
0: और सोमवार के हिंदुस्तानी में कैसे बोला जाए?
1: रविवार।
0: दोस्तों सुनने वालों, हम लोग एक दूसरे के देख लेते हैं तो बस।

0: भाई यूसुफ जी, हम लोग अपना कार्यक्रम के और जो हम लोग के खदेलता जो हम लोग कुछ कह रहे थे यहाँ से समाप्ति के सीमा पे आकर पहुँचे हैं, पर आज रात्रि में कोई ख़ास गीत है। हमने देखा एक पर्चा कि आजकल अमिताभ बच्चन का गीत को ज़्यादा चलाया जाता है, ऐसा क्यों?
1: वजह हमने यहाँ दिखाई
0: दिया है, और वजह हमने यहाँ क्या है भाई? पर उसे धरा गया
1: हम लोग आज
0: ओ खून लगातार रहेगा
1: सब कोई बैल करिया 924 हम लोग के है और आदमी लोग बैल करे हम लोग सबके गाना अंदराई कर देला
0: ऐसा। तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ तक हमने आपके साथ सहयोग दिए, आशा ये है कि आप सुनते रहना। यूसुफ जी और गंगा जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाले है। सभी को नमस्कार, जय गोविंद।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

क्या हमने किसी का पेट भरा पाए। क्या हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए।

दिया है, जा दिए है अपने वतन तेरे लिए। सुन वालो, मैं हूँ संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। और ये प्रश्न रख दिया गया है कि क्या मैंने अपने जीवन जिए है अपने वतन के लिए, क्या किए है, क्या अपने औरों के लिए हमने कुछ किए है कभी। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ और यहाँ तक भी कि कुछ संस्थाएं हैं जो अपने वतन के लिए कितना भीड़ भाड़ से काम करते हैं, उन सभी के लिए भी एक सुंदर सा गीत चलाने को कोशिश करूँगा।

जैसे कि हमें इस बात को भी पता है कि पाप शरीर नहीं करता है, विचारे हमारे करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोते हैं, तो देखा जाए कि हम अपने समाज, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता के लिए क्या किए हैं।

सुनने वालों, जब देखा जाए कि सूरीनाम में कितना, जो हम सूरीनाम में हमारा जन्म हुआ, हम अपने सूरीनाम वतन के लिए और यहाँ रहते हैं हॉलैंड में, हम क्या किए हैं अपने वतन के लिए। संस्था जो बनाया गया सूरीनाम में इस समय पे खूब जोर तोर से काम करते हैं, FALS, एक संस्था जो अपने समाज के लिए जोर तोर से काम करते हैं, उसका मोटो यही है कि अंस्टर्क सामलेफिंग दोर खुद लीडरशिप, अंस्टर्क सामलेफिंग दोर खुद लीडरशिप, ये भी बहुत ज़रूरत है। और फेयरलेस के लिए जो इतना जोर तोर से काम करते हैं, उस अंतर्गत हम एक सुंदर सा गीत प्लेयर पे चुन करके रखे हैं।

फन होम टेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से यह सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान शुभ ग्रह धन लाभ स्थान में स्थित हो या इन स्थानों को देखते हो। बुध निर्बल हो तथा केमद्रुप योग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार हैं। बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों और शुभ ग्रह हो इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लग्नेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो। यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो जाएगा।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लगनेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों, अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो। मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, स्वप्न तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ स्वप्न और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता,

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना, कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना, उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। सुनने वालों,

अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्ज़ी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला एवं मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्निकोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वे अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

सुनने वालों बाबा आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है सुनने वालों। भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

तुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं, जो होलांद डेनहाग शहर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हमारे साथ शांता खेमई जी भी है और बबली आसरा जी भी है, और अभी दूर से सही पर भारत से हमारे मास्टर जी राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम पहले बबली आसरा की ओर बढ़ेंगे, फिर शांता खेमई अपना एंट्री लेते हैं।

की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, अभी आपने सुने संजय जी और संजय जी से बात आप सुने बबली जी की और मेरी है, मैं तो शांता जी हूँ। तो शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि कदम कदम चाहे छोटे हो या बड़े, मंजिल को पाने के लिए बस चलते रहना वो ज़रूरी है। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

0: सुनने वालों हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी जो भारत देश से और हम हमारे साथ जो कार्यक्रम में और सहयोग देते हैं। तो राजेंद्र जी आप अपना एंट्री लीजिए और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: यहाँ पे सब लोग खुशी से हैं, सबको दिक्कत नहीं है। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को हम सब लोग का भारत से हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। आज जो हमारा विषय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया विषय रहने वाला है, जो कि नया विषय है और उस विषय के जो बारे में बातचीत रहेगी

0: सुनने वालों, यहाँ तक जो कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत रखा गया हरिओम सरन से, हम सब जो उन्हीं के गाया हुआ गीत जो हम सब हर बार ये कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और राजेंद्र सिंह जी, जो अभी हम सब के लिए अपने ओर से संदेश रखने वाले। तो राजेंद्र जी, ज़रा आप अपना संदेश हम सब के लिए और रखिए।
1: एक कहानी के माध्यम से हम और जो सीखेंगे, वो आज की जो कहानी है वो वीर बर्बरीक की। बर्बरीक यानी जो महाभारत का युद्ध था वो इतना बलशाली था कि वो कहता था कि जो तरफ कमज़ोर पड़ जाएगी मैं उसी तरफ से युद्ध जीतूँगा। और भगवान कृष्ण जानते ही थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ चले गया तो युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बर्बरीक को पहले ही किनारा कर देना चाहिए। तो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। बात करते हैं वीर बर्बरीक की। हिसार में एक पीपल का पेड़ है जिसको वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था। आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है। यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो लोग रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को काल्पनिक करार देते हैं एवं यह कहते हैं कि इन घटनाओं को मानने वाले लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उन लोगों के लिए यह किसी ज़ोरदार तमाचे से कम नहीं होगा। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ काल्पनिक है, मतलब नहीं हुई और ऐसी कहानी गढ़ी गई है, तो ये सब चीज़ जगह जगह देखे देख के आएँ और फिर तभी उनको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कि ज़ोरदार तमाचा की तरह है ये। जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरीक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में कुछ हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ता था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र तथा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा वह उनकी ओर लड़ेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण हैं और वह 1 बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान कृष्ण का स्मरण किया। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और स्मरण करा भगवान का और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दी वचन के अनुसार अगर बर्बरी कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को धारण, जो उनका विराट रूप है उनको देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। ये सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अभी जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बर्बरान, वीर बर्बरीक के नाम से ही जान पड़ता है। तो इस प्रकार से जो बड़े अच्छे सुंदर प्रसंग हैं, ज्योति के प्रकाश का लक्ष्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक प्रसंग और नई से नई जानकारी मिले और ज्ञान बढ़े। और जो हमारे पौराणिक या पुरातत्व विभाग और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, और हमारा जो खोजी विभाग है जो ढूंढ ढूंढ के लाता है और लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। और क्यों ना संजय जी एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आगे का कार्यक्रम की ओर।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने राजेंद्र और जी जो भारत से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपना संदेश रखे, जैसे कि चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियां, 108 उपनिषद के बाद भी यदि आपको लगे कि आपको और हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ कमी है, तो शायद इसके बारे में सोचने के बात हो जाता है। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम में बबली जी और शांता जी भी उपस्थित है, और बबली जी संदेश लेकर आए कि जो अगर आप 60 साल के ऊपर हो गए, क्योंकि कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें 60 साल के बाद में कुछ कमजोरी होने लग जाता है और शरीर में, उसके बारे में अनुराधा जी कितना संदेश हम सबको लिए रखे, पर आज जो 60 छोड़े 70 की ओर बढ़ जाते हैं, और बबली जी जो हमारे लिए संदेश लेकर यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में, तो बबली जी क्या संदेश आप रखने वाले हैं हमारे जो बुजुर्गों है जो 70 साल के ऊपर है उनके लिए, और क्या संदेश आप रखने वाले हैं?
1: सुनने वालों, तो यहाँ से हम प्रोग्राम को जारी करेंगे, और आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि आज के विषय है अपने शरीर में स्वस्थ रहने के लिए, और उसके बारे में बबली जी बताएगी कि स्वस्थ रहने में एक दो, हाँ जी, तो स्वस्थ रहने के लिए यहाँ से हम कुछ मैसेज यानी कि कुछ उपाय हम लेकर आए हैं। यही उम्मीद है कि आप सुने, और जो उम्मीद है कि आप जो इसे सुनकर जो लाभदायक हो तो अपने स्वास्थ्य के लिए इसे ज़रूर इस्तेमाल करें या ख्याल करें भी, ताकि आप आगे में ऐसे कोई मजबूरी हो या हो जाए तो जानने रहे कि आप इसे कैसे संभाल सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए बबली जी की आवाज़ में।
2: कभी पेशाब रुक जाए तो क्या करें? यह एक प्रसिद्ध एलोपैथिक चिकित्सक 70 वर्षीय ENT विशेषज्ञ का अनुभव है। आइए सुनते हैं उनका अनुभव। एक सुबह वे अचानक उठे, उन्हें मूत्र त्याग करने की ज़रूरत थी लेकिन वे कर नहीं सके। कुछ लोगों को बाद की उम्र में कभी कभी यह समस्या होती है। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन लगातार कोशिश नाकाम रही। तब उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या खड़ी हो गई है। एक डॉक्टर होने के नाते वे ऐसी शारीरिक समस्याओं से अछूते नहीं थे। उनका निचला पेट भारी हो गया, बैठना या खड़े रहना दुश्वार होने लगा, तल पेट में दबाव बढ़ने लगा। तब उन्होंने एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट को फ़ोन पर बुलाया और स्थिति के बारे में बतलाया। मूत्र रोग विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, मैं इस समय एक बाहरी क्षेत्र के अस्पताल में हूँ और आपके क्षेत्र के क्लिनिक में 2 घंटे में पहुँच पाऊँगा। क्या आप इतने लंबे समय तक इसका सामना कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूँगा। उसी समय उन्हें बचपन की एक अन्य एलोपैथिक महिला डॉक्टर का ध्यान आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दोस्त डॉक्टर को स्थिति के बारे में बतलाया।
1: हाँ बबली जी, तो हमको बता रहे हैं पेशाब के बारे में यानी कि प्लासक के बारे में, उसमें क्या दिक्कत है, तो आगे में चल कर हम सुनेंगे उसका हल भी कैसे हो सकता है। और यहाँ से, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे और बबली जी हमको बताएंगी ये जो पेशाब के बारे में जाते हैं और उसका हल भी कैसा निकलेगा। तो एक गीत के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे।

सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी, एक 70 वर्षीय डॉक्टर, और उनको एक दिन वो सुबह उठे और उनको पेशाब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपनी एक महिला दोस्त को फ़ोन किया जो भी पहले डॉक्टर थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, तो उन्होंने क्या सलाह दी अब वो बताएंगे। उनकी महिला डॉक्टर ने कहा, ओह आपका मूत्राशय भर गया है और कोशिश करने पर भी आप मूत्र त्याग नहीं कर पा रहे, चिंता ना करें, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करें, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। और उसने निर्देश दिया, सीधे खड़े हो जाइए और ज़ोर से बार बार कूदिए, कूदते समय दोनों हाथों को ऊपर यूं उठाए रखो मानो आप किसी पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, क्या सचमुच मैं इस स्थिति में कूद पाऊँगा? इलाज थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, यानी मुश्किल लग रहा था, फिर भी डॉक्टर ने कोशिश की। 3 से 4 बार छलांग लगाने पर उन्हें पेशाब की तलब लगी और उन्हें राहत मिल गई। उन्होंने इतनी सरल विधि से समस्या को हल करने के लिए अपने मित्र डॉक्टर को धन्यवाद दिया, अन्यथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता, मूत्राशय की जांच, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स आदि के साथ साथ कैथेटर लगाना होता। उनके और करीबी लोगों के लिए मानसिक तनाव के साथ लाखों का बिल भी होता।

0: gândit makkelijk plassen. Dat is er ook een oplossing daarvoor, wat ik heb begrepen bij Bubbly G. Bubbly G kehte hai ki apna dono haath upar kar le jaise aam todna ho na.
1: Haan ji Shanta ji.
0: Aur do teen baar kudna hai.
1: Haan, 10-15 baar kudiye.
0: Oh haan, 10-15 baar Bubbly G, 10-15 baar aap thora se kudna dono haath upar karke jaise hands up karke.
1: Sahi baat Shanta ji.
0: Haan, do teen baar aise kudna to
1: जो आपका ये चीज बंद हो जाती है तो खुल जाती कूदने से शांता जी.
0: हाँ, जो रुकावट है.
1: हाँ, रुकावट है जो भी
0: तो
1: है
0: वो रास्ता बन जाता है ताकि आप आसान से पिसाब कर सकें.
1: सही बात शांता जी.
0: हाँ हाँ, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं?
2: जरूर, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ बातें हो जाते हैं और शांता जी, जैसे कि कुछ अवस्था पे हो जाता है, पर कोई लोग की जवानी पे भी ऐसा हो सकता है ना, कोई जैसे कि नीर सीन आदि हो जाता है
0: तो
2: और ब्लॉकेर हो जाए है. और बड़ा मैंने ऐसे इसके बारे में सुना है कि दर्द होने लगता है
0: जी.
2: और खास करके जैसे कि अभी Bubbly G ने सुनाई कि एक इसे शायद हर बार और सभी कोई इससे और सुलाव ना मिल पावे ना, पर फिर भी ये हमारे जो खोजी से ना खोज करके और ये संदेश रखते हैं तो शायद किसी किसी के इससे और उनके जो दर्द है उनका और जो निकल्स यानी कि दच फरहोल पर बैंत वत खास करके इस पे रखा गया है कि हम दौड़ जाते हैं और हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जहां आप एडमिट हुए तो वहां मीटर जो पैसा वाला है वो चालू हो जाता है. जैसे कि आप पेट्रोल पंप में जाए और पेट्रोल पंप और जैसे कि गाड़ी से जुड़ गया तो वहां पर मीटर होता है वो चलने लगता है और वो नीचे के कभी नहीं जाता है, वो आगे के सिर्फ ऊपर की ओर जाते हैं. तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमारे कार्यक्रम को सुनने वालों इस समय जो एंडहोफ शहर से सुन रहे हैं और हमारे भाई जी सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते किया जा रहा है. और हमारा खास करके जो मिदफनतलंत और जा करके और उत्रेख आदि में जो कार्यक्रम को सुनते और एक व्यक्ति जिसका नाम मुझे नहीं पता है पर ये कह रहा है कि मैं गाड़ी में बैठ करके सुन रहे हूँ, तो भाई जी आपको भी बहुत सा और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा नमन किया जाता है और हम सब अपना संदेश रखते रहेंगे. आप बस सुनते रहना और संदेश कभी जब आवाज़ थोड़ा मध्यम रहे ना तो आपको पता है कि कौन सा बटन आपको राइट बगल घुमाना है. सुनने वालों, हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद अभी जो संदेश हम सब आपके लिए और भी रखने वाले हैं सुनते रहना, क्योंकि ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जीवन का ज्योत जल रहा है उसमें और प्रकाश आए.

0: हाँ तो हम यहाँ से वापस आ गए एक गीत के बाद और जारी करेंगे सुनने के लिए बबली जी की आवाज में।
1: शांता जी,
0: हाँ जी,
1: 55 साल से जो लोग ऊपर हो जाते हैं
0: हाँ,
1: तो उनके लिए कुछ और भी समस्याएं होती हैं और जिनका समाधान हम कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि 60 साल की ऊपर होने पर हम फुर्तीले हैं, ताकतवर हैं, पर वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उनका ताकतवर नहीं रहता। शांता जी,
0: बात तो सही है।
1: और उनको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, टिप्स यानी
0: जी,
1: कि जिससे शायद उनको कुछ फायदा हो।
0: जरूर से
1: कोशिश करूँगी,
0: क्योंकि सभी का उम्र तो ढलते है ना, तो जो जिसका उम्र अभी नहीं है 60 साल के और जो भी सुनते हैं तो उनके लिए भी ये एक सावधानी, एक टिप है, ताकि जब वो भी 60 साल के हो गए तो जरूर से इस्तेमाल कर, अपने जीवन में प्रयोग कर सके।
1: पचपन साल से ऊपर के लोगों का शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमज़ोर होते हैं, पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि यह काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स हैं।

धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूँगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम, एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। यह क्षति फ्रैक्चर से लेकर हैंड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत है, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें।

0: बबली जी, आपने बहुत सही कहा है, कही है। हमको भी ध्यान देना चाहिए पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। हाँ, बहुत सही तरह इस तरह से आपने कही है कि जो हम हड़बड़ी में करते हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि वो उसको हम जो कैसे फेव द फर्स्ट नेल जो बहुत जल्दी हम करते चाहते हैं उसको हमको हाल फेर में करना चाहिए। हाँ, आधे में
1: जल्दी वाला काम धीरे धीरे करना चाहिए शांता जी।
0: बिल्कुल, एक छोटे से उदाहरण, जैसे हम पानी भी पीते हैं ना, एक जग मुंह में गिलास लगता है या बोतल, तो एक बार में वो बोतल या गिलास खाली हो जाता है, पर ऐसे नहीं चाहिए पीने के लिए, घूट घूट चाहिए।
1: सही बात, अगर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं कई बार अचानक पेट में भी दर्द होने लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मैंने देखा है।
0: हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए।
1: भ्रम ना पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़े ना हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने बबली जी, ये भी हमारे डॉक्टरों भी कहते हैं, योग लेरार भी कहते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी से जो जाग जाते हैं तो आंखें सिर्फ खुलते पर बदन तो अभी तो थोड़ा आलसी में रहते हैं, और खून के वृक्क या ब्लड स्ट्रोम जो है वो अभी उतना एक्टिव नहीं होते हैं। और वो भी कहते हैं कि अगर जल्दी से हम उठ जाए तो ये भी होता है कि हमको चक्कर आता है, आ जाते हैं और हम गिर सकते हैं।
1: सही सही बोला शांता जी।
2: ये बात हो जाता है बबली जी कि ऐसा होता है हर साल में कितने लोग का, और इसी कारण जो घर से अकेला रहता है ना
0: जी,
2: और एक ही दाइन में छलांग लगा कर के खड़े हो जाता है और चक्कर आ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर कभी गलत और गिर भी गए, सिर में चोट लग गया, तो कितने लोग का भी मृत्यु ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात पे ध्यान दो कि हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने सोने के और ये सोने
0: जागने के
2: बाद ये तो चांदी वाला सोना हो गया था, तो दोस्तों ये वाला नहीं। पर आप अगर उठे तो जरूर अपने आराम से, जैसे कि यहाँ पर संदेश जो हमारी खोजी सेना ने खोज करके रखे हैं, तो उस पे ध्यान देना।
0: मेरे ख्याल से अगर जो जागे सुबह में जो जागे तो अपना हथेली को देखे, अपना सिर को थोड़ा सिरहा ले, अपने गाल को थोड़ा से सिरहा ले, या फिर से बैठ कर अपना घुटनों को थोड़ा से सुलहा ले, धरती को ताक ले, आसपास भी देख ले, तब जाकर तो उठे तो वो रक्त जो है, खून जो ब्लड स्ट्रोम जो है वो नॉर्मली सेर हो जाएगा, तब ये चक्कर आने के लिए तो वो तो दूर रहेगा।
1: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ शांता जी, मैं ये सोचती हूँ कि बैठे बैठे थोड़ा भगवान का नाम भी ले सकते हैं।
0: हाँ वो तो है। हाँ

हाँ, तो घड़ी की तरफ देखे तो घड़ी भी इशारा कर रहे है कि हमको विज्ञापन चलाना है। तो विज्ञापन यहाँ से हम सुनेंगे, उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे और जरूर से बबली जी का आवाज़ में सुनेंगे।

0: हाँ, ये सुंदर सा गीत अगर आपने शब्दों पर जो गौर की होगे तो शब्द या अपने आप सभी कुछ बता दी है, पर हम जरूर से दो बात कहना चाहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी, बबली जी आप कहो।
1: कि एक शब्द था शांता जी कि मीठा कम खाएं लेकिन मीठा बोलें।
0: एक वो तो सच है कि और भी कहते हैं कि जैसे खाओ जैसे पियो पानी वैसे बनेगा वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसा ही बनेगा मन।
1: सही बात।
0: तो हम अन्न और मन के साथ और मीठा बोली के साथ आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए हमारे बबली जी, और आगे क्या फरमा रहे हैं।

सुनने वालों, मैं आप सबको बता रही थी कि 55 साल से ऊपर के लोगों को थोड़ी सी टिप्स। अब हम आगे चलते हैं। बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डाल लें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती हैं। आप चाहे अकेले हो, पति पत्नी के साथ या संयुक्त परिवार में रहते हो, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हो तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ ना सके तो दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी, तब जब आप अकेले पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके।

0: जैसे कि बाथरूम में मोबाइल रखना आसान के लिए, तो मैं तो अपने दिमाग से बस घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसे अपना सावधानी के लिए धर मोबाइल पास में रहे ताकि कुछ दिक्कत आने पे तो उसके इस्तेमाल कर सके। हालांकि हम सोचते कि ऐसे कोई दिक्कत ना आवे, ना हम पर ना किसी और पर भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, दर्द बहुत होता है।
1: सुनने वालों, ये बात हो जाता है कि हम रहते हैं हॉलैंड में और यहाँ पर औदरन का जो और घर होते हैं ना, मकान होते हैं, तो उसमें ख़ास करके आज से जब हमें ये ख्याल आ रहा है कि अभी बखेन यार और अभी ताकतक नहीं था, नहीं एंट यार सैफन तक में हम जो हॉलैंड आए, तो उसी समय पे हम लोग बच्चे थे और घर में जब नाना नानी के घर में तो एक बटन लगाया होता था, तो हम लोग जबरदस्ती बच्चे थे तो दबा दिया जाता था, उसका पता नहीं था कि अलार्म था। पर यहाँ पर ऐसे बनाया गया है कि फॉर द औदरन के लिए ख़ास करके कि जो ऑनलाइन वार्निंग आदि में, तो वो और उसके पास वो होते हैं, वो सामान होते। पर भारत में जब देखा जाए, सूरीनाम में देखा जाए, तो ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया
0: अभी नहीं है।
1: और जरूर शायद हमारे खोजी सेना के जो खोज करके रखे हुए कि आप अपना मोबाइल पास रहे, पर गिरने से और उसे आप बच पाए, कोशिश करना कि गिरने से पहले अगर आपको कुछ भी महसूस होवे
0: तो बैठ,
1: तो हाँ अपना आराम से और जा करके इंतजार करें। और जब क्योंकि ऐसा हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि कभी कोई सफ़र करके आते हैं ना, सफ़र करके आते हैं प्लेन में से आ करके और जा करके और या ट्रेन में से आ करके उतरते हैं, तो जा कर के और शायद कोई अपने लगेज अपने कॉफर को इंतज़ार करते हैं, तो कोई इंतज़ार करते हैं कि दूसरा ट्रेन कैसे ले सके। पर वहाँ भी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि लोग अचानक गिर जाते हैं। और यहाँ हॉलैंड में बनाया गया है कि चारों बगल आई देव रखा गया है ना, जो अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो गया तो लोग वहाँ पर आकर के मदद कर सकते, तो ज़्यादा तादाद में हॉलैंड में ऐसे बच सकते हैं लोग। पर हमारे सुनने वालों जो अन्य देशों में ये कार्यक्रम को सुनते हैं, तो हर बार ऐसा होता है शायद कभी समय पे मदद आपके ना पहुँच पाए, तो फिर सबसे जो जिसका डर सभी के होते हैं वो भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी संदेश और हम सब आपके लिए रखने वाले हैं, क्यों ना